0: अर्चना प्रसारणपछि अब रिले गरेर सुन्दैछौँ दिल्ली केन्द्रका संस्कृत र हिन्दीमा समाचार।
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर विधानसभासनयोः भाजपेति दलेन बृहत्मत व्याप्त्या विजयः समधिगतः। तथैव असम राज्यस्य सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णे नगांव लोकसभासने भाजपा प्रत्याशी देवाशीष शर्मा विजयी जातः।

0: तमिलनाडु राज्ये मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलगवेत्री कशगम टीवीके इति दलेन धारापुरम तथा मधुरांतकम इति द्वे अपि विधानसभासने विजित्य नूतनः कीर्तिमानः स्थापितः। अपरञ्च पुदुचेरी राज्यस्य थट्टनचावडी आसने EINRC दलं स्वकीयं आसनं सुरक्षितं कृतवत्। उपनिर्वाचन परिणामेषु भाजपा एनडीए गठबंधनस्य प्रचंडं विजयं प्रशंसयन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् एषः जनादेशः सुशासन नीतौ देशवासीनां अगाध विश्वासं प्रकटीकरोति। अस्मिन् निर्वाचन चक्रे पश्चिम बंगालस्य नंदीग्राम रेजीनगर आसनयोः असमस्य नगांव संसदीय क्षेत्रे च भाजपा दलेन तमिलनाडु राज्ये तमिल अगवेत्री कशगम दलेन च ऐतिहासिकः विजयः प्राप्तः। लोक सुरक्षा चिन्तनात् पूर्व नियम निषेधात् च दिल्ली आरक्षी संस्थया जंतर मंतर क्षेत्रे प्रस्तावितस्य प्रदर्शनस्य अनुमतिः नैव प्रदत्ता। महानगर्यां दिल्ल्यां सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तं कठोरा वर्तते। पञ्चचत्वारिंशत् मेट्रो स्थानकानि च पिहितानि सन्ति। राष्ट्रीय राजधान्यां शान्ति व्यवस्थायाः रक्षार्थं दिल्ली आरक्षी प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् विहितानां समयानाम् अभावात् जंतर मंतर क्षेत्रे प्रदर्शनस्य अनुमतिः प्रदातुं न शक्यते। क्षेत्रे अस्मिन् भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितायाः 63-100 नियमानुसारं निषेधाज्ञा प्रवृत्ता वर्तते। सुरक्षा कारणात् दिल्ली मेट्रो रेल विभागेन राजीव चौक केंद्रीय सचिवालयं समेत्य 45 मेट्रो स्थानकानि पिहितानि। यातायात नियंत्रण विभागेनापि मार्ग परिवर्तनस्य मार्गदर्शिका प्रकाशिता अस्ति। प्रशासनेन नागरिकान् प्रति सुगम गमनाय अग्रिम मार्ग निर्धारणस्य परामर्शः प्रकल्पितः। नवदिल्ल्यां महिला बाल विकास मंत्रालयस्य राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रे भाषणं कुर्वन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किशोरीनां स्वास्थ्याय पोषणाय सर्वांगीण विकासाय च विशेष ध्यानं दातुं समाहूतवान्। जन सहभागिता भावना वर्धनाय प्रधानमंत्री प्रोक्तवान् यत् आंगनवाड़ी केन्द्राणि केवलं प्रशासनिक संस्थाः न भूत्वा सामाजिक सहयोगस्य जीवंत केन्द्राणि भवेयुः। साक्षात्कारात् परं वार्ताहरान् संबोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोक्तवान् यत् विपक्ष नेतारः विशेष गहन संशोधन SIR इत्यस्य प्रक्रियायाः कथित विसंगतीनां विषये राष्ट्रपति महोदयां ज्ञापितवन्तः। तैरपि निर्वाचन यंत्राणां EVM प्रयोगं समाप्य मतपत्रैः एव निर्वाचन संपादनस्य याचना विहिता। मतदात्री सूच्यां सामूहिक अपत्तीनां रोधनाय निर्वाचन आयोगेन प्रपत्र सप्त आवेदनस्य सीमा निर्धारिता। निर्वाचन आयोगेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः प्रति प्रेषित पत्रे स्पष्टीकृतं यत् प्रस्तावित आपत्ति अवधौ एकेन मतदात्रा अधिकमतेन 10 प्रपत्राणि एव प्रस्तौतुं शक्यन्ते। तथैव सतत नवीनीकरण काले प्रतिमासं केवलं 5 आवेदनानि स्वीक्रियन्ते। रांची नगरे द्वितीय T20 प्रतिस्पर्धायां वेस्टइंडीज दलेन भारतं 6 कन्दुकावपातैः विजित्य श्रृंखला 1-1 इति समाकृता। तृतीया स्पर्धा श्वः इंदौरनगरे भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन

0: पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल है। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी, हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार चलती रहेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई ओडिशा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र के कथित लीक होने के संबंध में की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मामला पिछले साल अक्टूबर में ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुआ था। बाद में ये मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति यूनिसेफ के सहयोग से किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श बैठक का आयोजन कर रही है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन की इस बैठक में पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने जन भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधान सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा विक्ट्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट अपने पास बरकरार रखी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम के नगांव लोकसभा उपचुनाव के लिए कल मतगणना हुई। इन 6 सीटों पर उपचुनाव मंगलवार को हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है। रांची में कल 2 टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का 3रा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत को दूरसंचार डिजिटल कनेक्टिविटी र प्राविधिक नव प्रवर्तन में उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शन गरेको छ। भारत मोबाइल कांग्रेस 2026 को विषय वस्तु स्केल विदाउट सीमाहरू रहेको छ, जसले डिजिटल नव प्रवर्तन भावी पुस्ता को कनेक्टिविटी र प्रविधि नेतृत्व विकास में भारत को बढ़्दो क्षमतालाई प्रतिबिंबित गर्दछ। यस अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भन्नुभयो, भारतमा दूरसञ्चार क्षेत्र र डिजिटल कनेक्टिभिटीको विकासलाई इन्डिया मोबाइल कांग्रेस प्लेटफर्मले प्रदर्शित गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, 5G कनेक्टिभिटी अब देशको हरेक जिल्लासम्म पुगिसकेको छ। श्री मोदीले थप भन्नुभयो, अहिले भारतभरि 5G कनेक्टिभिटी सञ्चालन गर्ने 5,50,000 भन्दा बढी बेस स्टेसनहरू छन्। उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधित गर्दै केन्द्रीय सञ्चार मन्त्री श्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले कनेक्टिभिटीमा भारतको प्रगतिलाई उजागर गर्दै श्री सिन्धियाले भन्नुभयो, प्रविधिको प्रसार तब मात्र हुन सक्छ जब यो किफायती र सस्तो अनि समावेशी हुन्छ। उहाँले थप भन्नुभयो, 2014 एक गिगावाट डाटाको लागत खर्च 268 रुपियाँ थियो, जबकि आज यसको लागत खर्च केवल 8 रुपियाँ मात्र रहेको छ, जसले भारतलाई विश्वको सबैभन्दा सस्तो डाटा मूल्य भएको देशहरूमध्ये एक बनाएको छ। श्री सिन्धियाले अझ भन्नुभयो, डाटा लागतमा आएको हरेक कमीले कम खर्चले प्रयोगमा भएको हरेक प्रविधिले त्यो क्यानभसलाई विस्तार गरेको छ जहाँ प्रत्येक भारतीयले जडान गर्न, सृजना गर्न र नव प्रवर्तन गर्न सक्दछन्। श्री सिन्धियाले उपकरण निर्माताहरू, दूरसञ्चार सञ्चालकहरू तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रत्येक कर्मचारीहरूलाई 5G विश्वको सबैभन्दा छिटो अपनाइएको 5G प्रविधि बनाउनुमा योगदान पुर्याएकोमा प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारतमा आज 550 मिलियन 5G प्रयोगकर्ताहरू छन्। श्री सिन्धियाले भन्नुभयो, IMC 2026 कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भावी पुस्ताको सञ्चार नेटवर्क, सार्वभौम क्लाउड पूर्वाधार र उन्नत डिजिटल प्लेटफर्महरू सहित धेरै उदयमान क्षेत्रहरूमा भारतको बढ्दो प्राविधिक क्षमतालाई प्रदर्शित गरेको छ। श्री सिन्धियाले भन्नुभयो, IMC 2026 प्रदर्शनले डिजिटल प्लेटफर्महरू र जीवन बचाउने सेल प्रसारण प्रणालीहरूदेखि AI, 6G नेटवर्कहरू, सार्वभौम क्लाउडहरू, 13 Hz सञ्चार र एकीकृत सेन्सिङ र सञ्चार समूहका प्रविधिहरूलाई समेटेको छ। भारतको 6G भिजन अन्तर्गतको प्रगतिमाथि प्रकाश पार्दै श्री सिन्धियाले भन्नुभयो, भारत 6G गठबन्धनले 90 संस्थानहरूलाई एकसाथ ल्याएको छ र विश्वभरिका संस्थानहरूलाई सहकार्य गर्न स्थापित गरेको छ।
1: समसामयिक समीक्षापछि अब रिलेख लिइरहेछौँ दिल्ली केन्द्रका हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
2: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुर स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: जालिम लोशन,
5: जालिम लोशन, जालिम लोशन,
4: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंबर्स अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह यह दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
5: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
4: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
6: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
4: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम

0: मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
1: बिरसा मुंडा गांव गांव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना दयनीय जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
0: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम करकेट्टा।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेन देन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
3: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
3: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स समाधान दीदी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar in National Capital today. Tightens security across National Capital. Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Putul Sonowal assures country's first ever medal at World Bowls Champion of Champions after reaching semi-finals in Australia. And in men's cricket, West Indies beat India by 6 wickets in the second T20 international to level 5-match series 1-1. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Women.

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: शाड़ी कुठी सर्वभारतीय शाड़ी और टांगाइल शाड़ी प्रस्तुतकारक और विक्रेता शाड़ी कुठी प्रोपाइटर ननी गोपाल दास।
6: অবিশ্বাস্য কম দামে অনবদ্য টাঙ্গাইল শাড়ির সেরা সম্ভার শাড়ি কুঠি।
5: তাঁত ও টাঙ্গাইল শাড়ির জগতের সবথেকে পুরনো প্রতিষ্ঠান শাড়ি কুঠি প্রোপাইটার ননি গোপাল দাস।
6: শাড়ি কুঠি প্রধান কার্যালয় ও শোরুম বাস স্ট্যান্ড ফুলিয়া, 2 নম্বর নতুন ফুলিয়া নদিয়া।
5: অন্যতম শোরুম 22/B সুরেন ঠাকুর রোড গড়িয়াহাট কলকাতা 19,
6: 203/1 MG রোড রুম নাম্বার 120, দ্বিতীয় তল বড় বাজার কলকাতা 7।
5: শাড়িকুঠি 1 নম্বর নজরুল পার্ক VIP কেষ্টপুর কলকাতা 169,
6: এবং শাড়িকুঠি 33 নম্বর বিবি গুপ্তা রোড খাগড়া বহরমপুর মুর্শিদাবাদ।
5: শাড়িকুঠি সর্বভারতীয় শাড়ি ও টাঙ্গাইল শাড়ির প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা শাড়িকুঠি প্রোপাইটার ননি গোপাল দাস।
7: मा हामी हेरेका छौँ जोडिएको छ सेवा सङ्कल्प अभियान आयुष्मान भारत। सेवा सङ्कल्प अभियान प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक जीवन अनि जनसेवाको 25 वर्ष पुरा भएको उपलक्ष्यमा 17 सेप्टेम्बरदेखि 17 अक्टोबर 2026 चलाइँदै गरिएको एउटा राष्ट्रव्यापी राष्ट्र निर्माण र जनजागरूकता अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना PMJAY विशेष प्राथमिकता दिँदैछ ताकि देशका अन्तिम लहरमा बसेका प्रत्येक जनसाधारणसम्म स्वास्थ्य सुरक्षाको लाभ पुग्न सकोस्। यो 1 महिने अभियानमा देशका विभिन्न राज्यहरूमा विशेष शिविर अनि स्वास्थ्य मेलाहरूको आयोजना गरिँदैछ। ग्रामीण अनि सहरी क्षेत्रहरूमा विशेष सेवा सेतु शिविर ल्याएर छुटिएका पात्र लाभार्थीहरूको तत्काल आयुष्मान कार्ड बनाइँदैछ। 70 वर्ष या त्योभन्दा धेर आयुका सबै बुजुर्ग मानिसहरूलाई रुपियाँ 4 लाखसम्मको सित्तै इलाज प्रदान गर्नको निम्ति यस अभियानद्वारा तीव्र गतिमा पञ्जीकरण गराइँदैछ।
8: জ্বর এসেছে? অবহেলা করবেন না।
9: ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়া দুটি হতে পারে।

0: শাড়ি কুঠি, সর্বভারতীয় শাড়ি ও টাঙ্গাইল শাড়ির প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা শাড়ি কুঠি, প্রোপাইটার ননী গোপাল দাস।
1: অবিশ্বাস্য কম দামে অনবদ্য টাঙ্গাইল শাড়ির সেরা সম্ভার শাড়ি কুঠি।
0: তাঁত ও টাঙ্গাইল শাড়ির জগতের সব থেকে পুরনো প্রতিষ্ঠান শাড়ি কুঠি, প্রোপাইটার ননী গোপাল দাস।
1: শাড়ি কুঠি প্রধান কার্যালয় ও শোরুম বাস স্ট্যান্ড ফুলিয়া, 2 নম্বর নতুন ফুলিয়া নদিয়া।
0: অন্যতম শোরুম 22-B সুরেন ঠাকুর রোড, গড়িয়াহাট, কলকাতা 19,
1: 203/1 MG রোড, রুম নাম্বার 120, দ্বিতীয় তল, বড় বাজার, কলকাতা 7।
0: শাড়ি কুঠি 1 নম্বর নজরুল পার্ক, VIP কেষ্টপুর, কলকাতা 169,
1: এবং শাড়ি কুঠি 33 নম্বর বিবি গুপ্তা রোড, খাগড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
0: শাড়ি কুঠি সর্বভারতীয় শাড়ি ও টাঙ্গাইল শাড়ির প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা শাড়ি কুঠি, প্রোপাইটার ননী গোপাল দাস।
2: বুখার আয়া হ্যায় ইসে নজরআন্দাজ না করেন।
3: डेंगू या मलेरिया दोनों ही मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं।
2: डेंगू और मलेरिया में कंपकंपी के साथ बुखार आना, पसीना आना, सिरदर्द, तेज पेट दर्द, बदन दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
3: ऐसे लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवा ना ले, तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाएं और डॉक्टर की सलाह लें।
2: घर के आसपास जमा पानी साफ करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मच्छरों को पनपने से रोकें।
3: जागरूक रहें, मच्छर जनित बीमारियों से बचाव करें।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
4: सधैं आजको दिनको विशेषता कोष सेगमेन्टमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ। जोडिएको छ आज सन् 2026 सालको अक्टोबर महिनाको 10 तारिक शनिवार, अनि आजको पावन दिन महालय पर्व हो, अनि यही दिन सर्वपितृ श्राद्धम विसर्जन पनि गरिने गरिन्दछ। जानौँ आजको पर्व बारेमा। आज विशेष सेगमेन्टमा महालयालाई मूलत पितृ विसर्जन अमावस्या भनिन्छ, यही सर्वपितृ अमावस्यालाई महालय अमावस्या पनि भनिने गरिन्छ। यो दिन ती सबै पितृहरूको श्राद्ध या पिण्डदान गरिँदछ जसका देहावसान अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि अनि चतुर्दशी तिथिमा भएको हुँदछ। यस अतिरिक्त जसलाई आफ्ना स्वर्गवासी परिवारजनका तिथि याद हुँदैन उनीहरूको श्राद्ध पनि यही दिन नै गरिने गरिँदछ। यस्तो मान्दछ कि पितृहरू पितृपक्षका 16 दिनहरूको समय नै पितृहरू धरतीमा आउने गर्दछन् अनि अमावस्याको दिन उनीहरूलाई बिदाई दिइँदछ। यो दिन धरतीमा आएका सबै पितृहरूको आत्मसन्तुष्टिको निम्ति पनि विभिन्न उपायहरू गरिने गरिँदछ। यो दिन

0: सत्य निष्ठा केवल एक शब्द होइन, यो हाम्रो कार्य संस्कृतिको पहिचान हो।
1: हरेक काममा पारदर्शिता, हरेक निर्णयमा निष्पक्षता, हरेक पाइलामा जवाफदेहिता,
0: यही हो सत्य निष्ठा, यही हो समृद्धिको बाटो। किनकि प्रिभेन्टिभ भिजिलेन्स केवल एउटा अभियान होइन,
1: यो हो असल व्यवस्था र असल भविष्यको जिम्मेदारी।
0: सफा सोच, सही काम, सत्य निष्ठा हाम्रो पहिचान। एनटिपिसी रमामसँग सत्य निष्ठादेखि समृद्धिको विश्वास।
2: ভোরের আকাশ, মহিষাসুর মর্দিনীর সুর, দেবীপক্ষে মা দুর্গার আগমনীর আলো। আহা, শক্তির সে কি অপরূপ সৌন্দর্য! কিন্তু দেবী কি শুধু মণ্ডপেই থাকেন? তিনি তো আমাদের রোজকার জীবনে, মায়ের নির্ভরতার হাতে, বোনের সাহস জোগানো কথায়, স্ত্রীর নীরব ভরসায় আর কন্যার নতুন স্বপ্নে। তবে শুধু এই সম্পর্কগুলোতেই নয়, তার নিজেরও একটা জগৎ আছে, নিজের স্বপ্ন সত্যি করার সেই অদম্য জেদ, কাজের জায়গায় তার আত্মবিশ্বাস, আর হাজার বাধা সত্ত্বেও নিজের পরিচয়ে মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলার আনন্দ। এই নিজস্বতাতেও তিনি যেন একাই দশভুজা। এই প্রতিদিনের দেবীদের জানাই শ্রদ্ধা, তাদের অসামান্য শক্তি আমাদেরও শক্তি হয়ে উঠুক। পিসি চন্দ্র জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে আমি আবির চট্টোপাধ্যায় সবাইকে জানাই দুর্গাপুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা। পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স, যা কিছু শুভ।
3: सूचना, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आफ्नो जिज्ञासा र समस्याहरूको समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसो भए सुन्न नभुल्नुहोस् स्वस्थ शरीर स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष प्रत्यक्ष फोन इन कार्यक्रम। आगामी 14 अक्टोबर 2026 साँझ 5:05 एफएम 103.5 मेगाहर्जमा प्रसारण हुनेछ। यसपटकको कार्यक्रममा हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित रहनुहुनेछ डाक्टर भूपेन्द्रजीत सिंह, स्पेसलिस्ट विट्रो रेटिना। उहाँले आँखा तथा दृष्टि सम्बन्धी समस्याहरूबारे श्रोताहरूको जिज्ञासाको प्रत्यक्ष रूपमा जवाब दिनुहुनेछ। आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्न लिएर तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। डाक्टरसँग सोझै फोन गरेर आफ्नो समस्या तथा जिज्ञासा राख्नुहोस् र उहाँको सल्लाह प्राप्त गर्नुहोस्। हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 03-542-999-317 अर्थात् 03-542-999-317। त्यसैले मिति सम्झना राख्नुहोस्, 14 अक्टोबर 2026 साँझ 5:05 सुन्नुहोस् आकाशवाणी खरसाङ एफएम 103.5 मेगाहर्स र सहभागी बन्नुहोस् फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ शरीरमा, स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ कुराकानी। तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो सरोकार।

0: এমাসে বিদ্যুতের বিলটা এত কম,
1: কমবেই তো। আমাদের ছাদে বসেছে সোলার প্যানেল, প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর মুভ বিজলি যোজনায়।
0: তার মানে এখন থেকে বিল কমই আসবে, আর পরিবেশও থাকবে ভালো।
1: হ্যাঁ, সঙ্গে সরকারি ভর্তুকি সর্বোচ্চ 78,000 টাকা। এছাড়াও রয়েছে তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত গ্রাহকদের জন্য রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত ভর্তুকি 5,000 থেকে 15,000 টাকা।
0: আজই আবেদন করুন pmsuryaghar.gov.in পোর্টালে।
1: আপনার পাশে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর তথা WBSEDCL।
2: त्यसो भए हामी कार्यक्रमको अत्यन्तै अन्तिम छोरमा आइपुगेको छौँ हेलो खरसाङको। त यहाँनिर एउटा सुन्नुहोस् सेगमेन्ट घरेलु औषधि, जसमा रहेको छ घरभित्र कमिला आएमा त्यसको बाटोमा अलिकति लुगा धुने साबुन दलिदिनुहोस्, कमिला तुरन्तै भाग्नेछ। ट्राई गरेर निश्चय पनि हेर्नुहोस् सदागन, किनभने यो काम लाग्ने एउटा छ कुरो। अनि यसपछि हामी आइरहेको छौँ अन्तिम गीततर्फ। आज हेलो खरसाङ कार्यक्रमको विदाई गीत नै भनौँ यसलाई, जोडिएको छ चलचित्र नसिबबाट सुमन कल्याणपुर, कमलेश अवस्थी अनि अनवरको समूह स्वरमा, नदीपक्षको बोल धुन लक्ष्मीकान्त रेलालको। अनि यो गीतको साथमा यहाँले छोड्दै हाम्रो प्राविधिक मित्र लोपसाङ लेप्चा अनि फुलेन रोईको साथमा, प्रसारण सहयोगी महेश दालको साथमा, तपाईँको साथी मित्रमा बिरेन पनि पर्दछु। ओझल ठिक 10:30 आधुनिक गीतको सङ्ग्रह लिएर आउनुहुन्छ उद्घोषिका रश्मि दिनु सामेल विधा। यस कार्यक्रमबाट नमस्ते।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: संगीत ले जीवन बनाए, संगीत में रमे, गीत लेखे सृजना गरे, स्वयं गाए अनि अरूलाई पनि गाउन लगाए, यिनै कलाकारको केही कुराहरू साझा गरिरहेका छौँ आज हामी। संगीतप्रति संगीतका नरवीर रसाइलीको रुचि साथै संगीत सृजना स्कूल पढ्दादेखि नै गरेको थियो। उनी विचित्र कला संगठनसित आबद्ध थिए। सन् 1972 सालमा विचित्र कला संगठनका कलाकारहरूद्वारा युवा गोष्ठी कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यस समय उनले

0: बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रस्तावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। रेलवे के डीसीपी बी भरत रेड्डी ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 जवान तैनात किए गए हैं।
1: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं। प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव

0: प्रस्तावित आपूर्ति साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका का नियंत्रण डीजल की कीमतों को कम करने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। 250 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज ने 19वें ओवर में 4 विकेट पर 252 रन बनाए। कप्तान शाय होप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय वीसी प्रमोद।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, why कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।

0: यतिन्जेल सुन्नुभयो लेस लिविसको स्वरमा केही हिन्दी गीतहरू आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट एफएमएक्सै 3.5 मेगाहर्जमा समय यस बेला मध्याह 12 बज्न लागिरहेछ र अघिल्लो क्रममा समय भइरहेछ समाचारको केही क्षणमै दिल्ली केन्द्रको समाचार रिले गरी सुनाउँछु।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचारको साथमा मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीजीपी के प्रदर्शन के बीच श्री नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत के विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
1: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकाले खां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी

संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: pmsuryaghar.gov.in পোর্টালে।
1: আপনার পাশে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর তথা WBACDCL।
2: सत्यनिष्ठा केवल एक शब्द होइन यो हाम्रो कार्य संस्कृतिको पहिचान हो।
3: हरेक काममा पारदर्शिता, हरेक निर्णयमा निष्पक्षता, हरेक पाइलामा जवाफदेहिता,
2: यही हो सत्यनिष्ठा, यही हो समृद्धिको बाटो। किनकि प्रिभेन्टिभ भिजिलेन्स केवल एउटा अभियान होइन,
3: यो हो असल व्यवस्था र असल भविष्यको जिम्मेदारी।
2: सफा सोच, सही काम, सत्यनिष्ठा हाम्रो पहिचान। एनटिपिसी रमामसँग सत्यनिष्ठादेखि समृद्धिको विश्वास।

0: অনন্য শক্তি আমাদেরও শক্তি হয়ে উঠুক। পিসি চন্দ্র জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে আমি আবির চট্টোপাধ্যায় সবাইকে জানাই দুর্গাপুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা। পিসি চন্দ্র জুয়েলার্স, যা কিছু শুভ।
1: এমাসে বিদ্যুতের বিলটা এত কম,
2: কমবেই তো। আমাদের ছাদে বসেছে সোলার প্যানেল, প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর মুখ বিজলি যোজনায়।
1: তার মানে এখন থেকে বিল কমই আসবে, আর পরিবেশও থাকবে ভালো।
2: হ্যাঁ, সঙ্গে সরকারি ভর্তুকি সর্বোচ্চ 78,000 টাকা। এছাড়াও রয়েছে তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত গ্রাহকদের জন্য রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত ভর্তুকি 5,000 থেকে 15,000 টাকা।
1: আজই আবেদন করুন pmsuryaghar.gov.in পোর্টালে।
2: আপনার পাশে রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর তথা WBACDCL।
3: तपाईको अनुरोधमा यस कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौं श्रोता हामी र सुनाइरहेछौ। कार्यक्रमको अघिल्लो अनि यो अन्तिम गीत रहेको छ चलचित्र सिम्बाबाट राहत फतेह अली खा, आशिष कौर अनि तानिस्क वाक्चीको स्वरमा। शब्द छ रश्मि बिराको, संगीत तानिस्क वाक्चीको। यस गीतलाई सुन्न चाहने हाम्रा श्रोताहरू हुनुहुन्छ गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज प्यालेस मौनाथ भञ्जन उत्तर प्रदेशबाट, राजेश राज वर्मा, प्रीति वर्मा अनि कार्तिक आर्यन वर्मा। यसरी नै शिव मन्दिर हकीकत पुरा माओबाट हुनुहुन्छ मुन्ना भाई स्वर्णकर, पिंकी स्वर्णकर, आर्यन कृष्ण अनि पिहु स्वर्णकर। मेन रोड राजविराज नेपालबाट हाम्रा श्रोताहरू हुनुहुन्छ मोहम्मद अतउल्ला, बेगम जिनत जहाँ, सोनी परवीन अनि पिया जालम। बडी खञ्जरपुर भागलपुर बिहारबाट हुनुहुन्छ गुलफराज आलम, शमा आरा अनि जमालुद्दिन। शाह मार्केट भागलपुरबाट सिटिजन मास्टर अनि हुसैन मास्टर। डीएन सिंह रोड भागलपुरबाट अफरोज आलम, बरकत आलम अनि शादा भाई। यसरी नै राजविराज नेपालबाट हुनुहुन्छ श्याम कुमार हाकु, तारादेवी, राजन, कल्पना, सुम्निमा, पिंकी, खुशबु, श्रुति, पूजा, पूर्णिमा हाकु अनि सन्नी हाकु। रिंगिनी छत्तीसगढ़बाट हुनुहुन्छ दिनेश वर्मा अनि करुणा वर्मा। गान्धी चौक रोपड़ पंजाबबाट हरदेव मिका, बलविन्दर विरक, जयतेग विरक अनि मिका विरक। न्यू चम्टा चिया बगान गिर्जा लाइनबाट हुनुहुन्छ तर्कत्रुस एका, स्वर्णलता एका, श्रद्धा एका, अनिरुध एका, डेमेन एका, जुलियन एका, चार्ल्स एका। साथै छाउगुडी बस्तीबाट हुनुहुन्छ विमल खडिया, मीना खडिया, सुचिता खडिया, निलु अनि सोनिया खडिया। माधेवघाट अम्लेश्वरबाट हुनुहुन्छ डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति अनि रियान्स ठाकुर। र छत्तीसगढबाट हुनुहुन्छ दत्रेङ्गीबाट भागवत वर्मा, लेबाईबाट गुलाब दास मणिपुरी, लन्चनपुरबाट विश्वनाथ साहु अनि चार डोंगरी पिपरियाबाट हुनुहुन्छ दुर्गा राम साहु। आउनुहोस् यहाँहरू सबैको अनुरोधमा सुरु कार्यक्रमको यो अघिल्लो अनि अन्तिम गीत।

0: अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले।
0: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
4: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना

0: असाधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
1: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता और ये सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
3: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
4: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
3: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
0: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। इसमें F-35 लाइटनिंग 2, राफेल और F-16 सहित कई उन्नत युद्धक विमानों के साथ परिवहन एवं हवा में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हैं। पावर इन पार्टनरशिप थीम पर आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन अनुभवों का आदान प्रदान करना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के सहयोग से आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर

0: खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
1: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
0: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उप निदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्योहार मां दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेलीमानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समय यसबेला दिउँसोको 2:30 भइरहेछ। श्रोताहरू अहिले हुनुहुन्छ आकाशवाणीको नेपाली प्रसारण सेवामा। र जति पनि श्रोताहरू हामीसित जोडिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबै सबैलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु, साथै अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म रश्मि, आकाशवाणीको नेपाली प्रसारण सेवाबाट।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
0: हमेशा पूछो WHY. Why? कहता है कैप्टन Why ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
3: सत्यनिष्ठा केवल एक शब्द होइन, यो हाम्रो कार्य संस्कृति को पहचान हो।
4: हरेक काम में पारदर्शिता, हरेक निर्णय में निष्पक्षता, हरेक पाइला में जवाबदेहिता,
3: यही हो सत्यनिष्ठा, यही हो समृद्धि को बाटो। किनकि प्रिवेंटिव विजिलेंस केवल एउटा अभियान होइन,
4: यो हो असल व्यवस्था र असल भविष्य को जिम्मेदारी।
3: सफा सोच, सही काम, सत्यनिष्ठा हाम्रो पहचान। NTPC रमामसँग सत्यनिष्ठा देखि समृद्धि को विश्वास।

0: आफ्नै शब्द संगीत अनि स्वर रहेको थियो जो सुन्नुभयो यो कार्यक्रमको यो प्रथम गीत जीवनदीप थापाको स्वरमा
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं अभी रिडीम करें
2: अरे वाह मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए एक Why आपको फ्रॉड से बचाए
1: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI
3: आपका साइबर रक्षक

0: परियोजनाहरू राष्ट्रलाई समर्पित गर्नुहुनेछ। उनी दिल्ली जानुअघि भोलि जय गोपाल गरुडिया कार्यक्रममा पनि भाग लिनुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई ध्यानमा राख्दै चेन्नई र वरिपरिका क्षेत्रमा सुरक्षा कडा गरिएको छ। आज नयाँ दिल्लीको जन्तर मन्तरमा विरोध प्रदर्शनको लागि सीजेपीको आह्वानलाई ध्यानमा राख्दै दिल्ली पुलिसले सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न व्यापक र कडा व्यवस्था गरेको छ। नयाँ दिल्ली जिल्लाका धेरै चेकपोस्टहरूमा भारी पुलिस बल तैनात गरिएको छ। दिल्ली पुलिसका उपायुक्त कुमार अभिषेकले मिडियालाई यस क्षेत्रमा कानून र व्यवस्था कायम गर्न विस्तृत व्यवस्था गरिएको र सुरक्षाको शर्तमा सावधानीपूर्ण जाँच भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदर्शनमा सामेल हुने प्रयासमा केही व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा पनि लिएको बताउनु भयो। सुरक्षाका कारणले दिल्लीका 45 मेट्रो स्टेशनहरूमा आज साँझ 6 बजेसम्म प्रवेश र निकासद्वारहरू बन्द रहनेछन्। यी स्टेशनहरू जनपथ, पटेल चोक, केन्द्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चोक, नयाँ दिल्ली, सेवा तीर्थ र मण्डी हाउस हुन्। नयाँ दिल्ली मेट्रो स्टेशन बाहेक सबै सम्बन्धित स्टेशनहरूमा ट्रेन परिवर्तित सुविधा उपलब्ध हुनेछ। यद्यपि दिल्लीको आनन्द विहार रेलवे स्टेशनदेखि उत्तर प्रदेशको मोदीपुरम स्टेशनसम्म नमो भारत रेल सेवा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार चल्नेछ। यता राष्ट्रिय राजधानी दिल्लीका धेरै क्षेत्रमा ट्राफिक सुचारू भइरहेको छ। दिल्ली ट्राफिक पुलिसले सोसल मिडियामा भिडियो सेयर गर्दै यसको जानकारी दिएको छ। कृषि मन्त्री शिवराज सिंह चौहानले आज मध्यप्रदेशको राजधानी भोपालमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै इन्डी गठबन्धनमाथि आलोचना गर्नुभयो। उहाँले उहाँको नाम नलिकन कक्रो जनता पार्टीप्रति पनि कटाक्ष गर्नुभयो। चौहानले भन्नुभयो, एकतिर जनता विकसित भारत निर्माणका लागि मोदीजीको साथमा उभिएका छन्, अर्कोतिर विपक्षी निराश छन्। भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष नितिन नवीनले लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गान्धी र आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरीवालको सहयोगी टिम सीजेपी नेताहरूले देशमा खतरनाक र गम्भीर स्थिति सृजना गर्न खोजिरहेको आरोप लगाउनुभयो। श्री नवीनले भन्नुभयो, विपक्षले राजनीतिक उद्देश्यका साथ विदेशी शक्तिहरूको इशारामा गरिरहेको छ।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: समाचार आकाशवाणीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। ताजा समाचार जान्नका लागि सोसियल मिडिया ह्यान्डल एक्समा @AIR News कर्सियङ अनि फेसबुकमा आकाशवाणी समाचार नेपालीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यो आकाशवाणी हो। अब रहल समाचार। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्र सेवा र निरन्तर प्रतिबद्धताका साथ जनसेवाको 25 वर्ष पूरा गर्नुभएको छ र उहाँको यात्रा निरन्तर जारी छ। सेवा र सुशासनको यस दृष्टिकोणबाट प्रेरित भएर सरकार 2047 विकसित भारतको लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर लागि परेको छ। समावेशी विकास र सामाजिक सशक्तिकरणको माध्यमबाट यो समर्पणले आज करोडौं जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ। आज हाम्रो यो विशेष श्रृङ्खलामा हामी खेल महाकुम्भ से खेलो इन्डिया पहलको माध्यमबाट यो दूरदर्शी सोचलाई कसरी आधार बनाएको छ र खेलकुदको क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ यसबारे कुरा गर्नेछौँ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
3: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
2: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और 4th स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनि गृहमन्त्री अमित शाहले महालयको शुभ अवसरमा देशवासीलाई शुभकामना दिनुभएको छ। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले आधुनिक युद्ध

0: हवस् त श्रोता, कौशिकी चक्रवर्तीको स्वरमा यो देशभक्ति गीतसँगै अहिलेलाई भने विदा माग्छौ। आकाशवाणीको नेपाली प्रसारण सेवाबाट समय अपराह्न 4 बज्यो। श्रोताहरू अहिले हुनुहुन्छ आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रसँग एफएम 103.5 मेगाहर्जमा, साथै श्रोताहरूले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ आकाशवाणी दार्जीलिङ एफएम 101.2 मेगाहर्ज, मोबाइल एप न्यूज अन एआईआर लगायत प्रसार भारतीको ओटीटी प्लेटफर्म वेब्समा पनि हामी उपलब्ध छौ। र अबको समय हो हिन्दी वार्ताको, जोडिरहनु होला आकाशवाणीसँग।
1: नमस्कार श्रोताओ, मैं आपकी संचालिका सुरक्षित तामंग की ओर से स्वागत है हमारे आज की हिंदी वार्ता में। श्रोताओ, खाद्य सुरक्षा का अर्थ सभी लोगों के लिए हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता है, जबकि पोषण ये सुनिश्चित करता है कि शरीर को स्वस्थ रहने के लिए सही पोषक तत्व मिले। जब जलवायु परिवर्तन से फसलें प्रभावित होती है तो खाद्य उपलब्धता का कम होने के साथ साथ भोजन की गुणवत्ता और पोषण स्तर दोनों गिर जाते हैं।

0: दोस्तों, हमारा आज का विषय पर इसी पर ही आधारित है। हमारा आज का विषय है खाद्य सुरक्षा और पोषण। हमारे आज की इस वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं विनय कुमार पटेल। तो आइए दोस्तों, इस वार्ता को सुना जाए।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी कर्षियांग के सभी श्रोतागणों का मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल स्वागत भी करता हूं और आप सबका अभिनंदन करते हुए आज के मेरे विषय पर जो जुड़ा हुआ है खाद्य सुरक्षा और पोषण पर, भारत के संदर्भ में बहुआयामी विश्लेषण, चुनौतियां और भविष्य की रणनीतियों पर आज मैं अपने विचार आप सबके समक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, भोजन मनुष्य की सबसे बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है। पर्याप्त और पौष्टिक भोजन के बिना स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उत्पादकता और सामाजिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी देश की वास्तविक प्रगति केवल उसके सकल घरेलू उत्पाद्य, औद्योगिक उत्पादन या बुनियादी ढांचे से निर्धारित नहीं होती, बल्कि इस बात से भी निर्धारित होती है कि उसके नागरिकों को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन किस हद तक उपलब्ध है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में खाद्य सुरक्षा का प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देश में भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कृषि संबंधी विविधता अत्यधिक है। एक ओर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र उच्च कृषि उत्पादकता के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अनेक आदिवासी, पहाड़ी, सूखा प्रवण तथा वर्षा आधारित क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन और बाजार तक पहुंच कमजोर हो सकती है। इसी प्रकार महानगरों में खाद्य की उपलब्धता अधिक होने के बावजूद गरीब और प्रवासी परिवारों के लिए स्वस्थ आहार की वहनीयता एक गंभीर चुनौती बनी रह सकती है। खाद्य सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा मुख्यतः भूख और खाद्यान्न की उपलब्धता से संबंधित है, किंतु आधुनिक दृष्टिकोण में खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल पेट भरने के लिए भोजन प्राप्त करना नहीं है। खाद्य सुरक्षा में भोजन की उपलब्धता, उस तक आर्थिक और भौतिक पहुंच, भोजन का उचित उपयोग तथा समय के साथ इन सभी आयामों की स्थिरता शामिल होती है। भारत सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधी व्याख्या भी खाद्य सुरक्षा की को उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और स्थिरता के संदर्भ में देखती है। इसी कारण खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के साथ साथ इन दोनों को एक साथ देखना आवश्यक है। यदि किसी परिवार के पास पर्याप्त चावल या गेहूं है, लेकिन उसके आहार में दाल, दूध, अंडा, फल, सब्जियां, मेवे और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्रोत पर्याप्त नहीं है, तो उस परिवार को खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त हो सकती है, लेकिन पूर्ण पोषण सुरक्षा नहीं। भारत में यही परिवर्तनशील परिदृश्य दिखाई देता है। देश ने खाद्यान्न उपलब्धता और वितरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संस्थागत क्षमता विकसित की है, लेकिन कुपोषण के विभिन्न रूप अभी भी मौजूद है। FAO और उसके साझेदार संगठनों की 2024 की रिपोर्ट ने भी वैश्विक स्तर पर भूख, खाद्य असुरक्षा और

पोषण के सभी रूपों को समाप्त करने की दिशा में वित्तीय और नीतिगत प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अतः भारत के लिए खाद्य सुरक्षा की अगली अवस्था केवल अधिक भोजन उपलब्ध कराने की नहीं बल्कि बेहतर भोजन उपलब्ध कराने की है। खाद्य सुरक्षा की अवधारणा पर बात करते हुए खाद्य की उपलब्धता पर विचार करना सबसे पहले जरूरी। खाद्य सुरक्षा का पहला आयाम खाद्य की पर्याप्त उपलब्धता है। इसमें घरेलू कृषि उत्पादन, आयात, खाद्य भंडार, बाजार आपूर्ति और खाद्य वितरण तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हरित क्रांति के बाद भारत ने गेहूं और चावल के उत्पादन में बड़ी वृद्धि की। इसके परिणाम स्वरूप देश को बड़े पैमाने पर खाद्यान्न आयात पर निर्भरता से बाहर निकलने में सहायता मिली। भारतीय खाद्य निगम, न्यूनतम समर्थन मूल्य और बफर स्टॉक व्यवस्था ने खाद्य उपलब्धता को स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन वर्तमान चुनौती उत्पादन की कुल मात्रा से आगे बढ़कर उत्पादन की संरचना की है। यदि कृषि व्यवस्था मुख्यतः कुछ चुनिंदा अनाजों पर केंद्रित रहती है तो प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो सकता है। किसी देश में पर्याप्त खाद्यान्न होना अपने आप में खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं है। गरीब परिवारों, भूमिहीन मजदूरों, बेरोजगारों, प्रवासियों और सामाजिक रूप से कमजोर समूहों के पास भोजन खरीदने की आर्थिक क्षमता सीमित होती है। इसलिए आय, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और खाद्य कीमतें खाद्य पहुंच के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ने खाद्य तक पहुंच को अधिकार आधारित व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया। NFSA के अंतर्गत अधिकतम निर्धारित कवरेज के आधार पर लगभग 2/3 आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ने का प्रावधान है। आधिकारिक NFSA पोर्टल के अनुसार वर्तमान में लगभग 80.60 करोड़ यानी 80 करोड़ 60 लाख व्यक्ति NFSA के अंतर्गत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कवर किए जा चुके हैं। खाद्य सुरक्षा का तीसरा आयाम खाद्य के उचित उपयोग से जुड़ा है। इसमें भोजन की गुणवत्ता, पोषक तत्वों का अवशोषण, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यवहार महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए यदि बच्चे को पर्याप्त भोजन मिलता है लेकिन वह बार बार दस्त या संक्रमण से पीड़ित होता है तो उसके शरीर में पोषक तत्वों का उपयोग प्रभावित हो सकता है। इसलिए पोषण को केवल भोजन की मात्रा से जोड़ना वैज्ञानिक रूप से अपर्याप्त है। खाद्य सुरक्षा का चौथा आयाम स्थिरता है। इसका अर्थ है व्यक्ति या परिवार को मौसम, बेरोजगारी, महामारी, प्राकृतिक आपदा, मूल्य वृद्धि या अन्य संकटों के दौरान भी पर्याप्त भोजन उपलब्ध रहना चाहिए। COVID-19 महामारी ने इस आयाम की महत्ता को स्पष्ट किया है। लॉकडाउन, रोजगार संकट, प्रवासन और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों ने दिखाया कि सामान्य परिस्थितियों में मजबूत दिखाई देने वाली खाद्य प्रणालियां संकट के दौरान कितनी संवेदनशील हो सकती। इस मामले में हमें यह भी याद रखना होगा कि COVID-19 के दौरान बहुत ही बेहतर ढंग से हर व्यक्ति तक भोजन और खाद्य सामग्रियां पहुंचे इसका इंतजाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा सुनिश्चित किया गया। भारत ने खाद्य नीति का ऐतिहासिक केंद्र मुख्यतः कैलोरी और अनाज उपलब्धता रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारण स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न की कमी और बार बार उत्पन्न होने वाले अकाल एवं खाद्य संकट थे। लेकिन आज भारत की चुनौती अलग है। देश को पर्याप्त कैलोरी के साथ प्रोटीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, फोलेट, अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी

होगी। इस परिवर्तन को तीन स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला है कैलोरी सुरक्षा, दूसरा है पोषण सुरक्षा, तीसरा है स्वस्थ आहार की सुरक्षा। कैलोरी सुरक्षा का अर्थ है पर्याप्त ऊर्जा की उपलब्धता। पोषण सुरक्षा का अर्थ है शरीर के विकास, प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी प्रमुख पोषक तत्वों की पर्याप्त उपलब्धता। स्वस्थ आहार की सुरक्षा इससे भी व्यापक अवधारणा है, जिसमें संतुलित, विविधतापूर्ण, सुरक्षित, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य और आर्थिक रूप से वहनीय भोजन शामिल है। FAO के अनुसार वैश्विक खाद्य सुरक्षा की चुनौती अब केवल भूख तक सीमित नहीं है, बल्कि अरबों लोगों के लिए स्वस्थ और पर्याप्त भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करने से भी जुड़ी हुई है। भारत में पोषण की अगर स्थिति पर हम बात करें, भारत में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे भी कुपोषण का शिकार हैं। जैसे आप इसे कैसे समझ सकते हैं, जैसे किसी बच्चे में ठिंगनापन है, बौना है, उसका विकास सही ढंग से नहीं हुआ है, उसका वजन कम है, अतिरिक्त दुबलापन है, और यह सब बताता है कि उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, और यह कमी बाल्यकाल से ही उनमें नजर आती है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। महिलाओं में भी पोषण की पर्याप्त चुनौतियां हैं। महिलाओं का पोषण पूरे परिवार और अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य से जुड़ा है। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषण की कमी की वजह से बच्चे के जन्म के वक्त उसका वजन कम होता है और अन्य प्रतिकूल परिणामों का जोखिम भी बढ़ जाता है। भारत में महिलाओं में एनीमिया लंबे समय से एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। इसके पीछे केवल आयरन की ही कमी नहीं है, बल्कि संक्रमण, परजीवी रोग, भोजन की गुणवत्ता, बार बार गर्भधारण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच जैसे अनेक कारण इसके पीछे मौजूद। इसके अलावा मोटापा, गैर संचारी रोग, ये तमाम चीजें भारत में पोषण संबंधी स्थिति को हमारे सामने रखते हैं। गरीबी और खाद्य सुरक्षा का आपस में एक संबंध है। गरीबी खाद्य असुरक्षा के प्रमुख निर्धारकों में से एक है। गरीब परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है। जब खाद्य कीमतें बढ़ती हैं, तो गरीब परिवार सबसे पहले आहार की गुणवत्ता में कटौती कर सकते। उदाहरण के लिए महंगी दाल, दूध, फल और सब्जियों की जगह अपेक्षाकृत सस्ता अनाज अधिक मात्रा में लिया जा सकता है। इससे कैलोरी की आवश्यकता पूरी हो सकती है, लेकिन आहार विविधता कम हो सकती है। भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। नीति आयोग की 2023 की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच लगभग 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। फिर भी गरीबी के विभिन्न रूपों का खाद्य और पोषण परिणामों पर प्रभाव अलग अलग हो सकता है। इसलिए केवल आय गरीबी को मापना पर्याप्त नहीं बना सकता। इस पोषण के साथ कृषि का भी एक गहरा संबंध है, क्योंकि कृषि के द्वारा जो खाद्यान्न उपलब्ध होंगे उसी पर पोषण निर्भर रहता है। ऐसे में हमें आने वाले समय में, जैसे हरित क्रांति के समय में गेहूं और चावल की उत्पादकता को बढ़ाकर खाद्य उपलब्धता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, इसी प्रकार दालों का उत्पादन बढ़ाना होगा, मोटे अनाजों को बढ़ावा देना होगा, फल और सब्जियों की उपलब्धता को बढ़ाना होगा, बागवानी को मजबूत करना होगा, पशुपालन और मत्स्य पालन का विस्तार करना होगा, स्थानीय और पारंपरिक खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करना होगा, पोषण और संवेदनशील कृषि को बढ़ावा देना होगा। इन सब का संबंध पोषण की आपूर्ति के साथ जुड़ा हुआ। खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अगर भूमिका है, तो इसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका पोषण के मामले में भी है। खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार

सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। NFSA के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की 75% तक और शहरी क्षेत्र की 50% तक आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने की व्यवस्था है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रत्येक माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न तथा प्राथमिकता परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार निर्धारित है। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की प्रमुख उपलब्धियां पर अगर हम बात करें तो गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, मूल्यों को स्थिर रखने में अपना योगदान देना, संकट के समय सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ग्रामीण और निम्न आय परिवारों को समर्थन देना और खाद्य अधिकार को संस्थागत आधार प्रदान करने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ जिसमें खाद्य सुरक्षा को कल्याणकारी योजना से अधिकार आधारित व्यवस्था की दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया। आधिकारिक NFSA पोर्टल इसे खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में ही प्रस्तुत करता है। इसमें इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी और बाल पोषण, स्कूल पोषण और मध्यान्ह भोजन, खाद्य सुरक्षा और लैंगिक असमानता, आदिवासी और वंचित समुदायों तक, प्रवासी श्रमिक और शहरी खाद्य सुरक्षा, इन तमाम चीजों को सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के साथ खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का भी एक संरचनात्मक प्रयास किया गया है। इस रूप में यदि हम देखें तो खाद्य सुरक्षा कृषि उत्पादन, खाद्य कीमतों, घरेलू आय और पोषण, इन सबको एक साथ जोड़कर नीतियां बनाने की कोशिश की गई है। क्योंकि यदि फसल का उत्पादन घटता है तो खाद्य की कीमतें बढ़ती हैं, गरीब परिवार महंगे खाद्य पदार्थों का सेवन ऐसे में कम कर देंगे, इससे आहार विविधता भी प्रभावित हो जाती। इसलिए जलवायु के अनुकूल जो कृषि खाद्य सुरक्षा की नीति बनाई जा सकती है उसे बनाया गया है। इसी के साथ खाद्य सुरक्षा को डिजिटल तकनीक के साथ जोड़कर योग्य लोगों तक, जिनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन तक खाद्य पदार्थों को पहुँचाने का प्रयास किया गया है, जिसमें डिजिटल राशन कार्ड, पोर्टेबल राशन, ई पास मशीन, आपूर्ति श्रृंखला ट्रैकिंग, डिजिटल पोषण निगरानी, कृषि मौसम सलाह, बाजार मूल्य सूचना, ड्रोन एवं रिमोट सेंसिंग, किसान डाटाबेस और पोषण जोखिम मानचित्रण, ये सारी चीजें डिजिटल तकनीक के साथ जुड़ी हुई हैं, जिससे एक ओर खाद्यान्न आपूर्ति को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है और दूसरी तरफ पोषण आपूर्ति को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, इस रूप में निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद से अब तक एक लंबी यात्रा तय की है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बफर स्टॉक, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आंगनवाड़ी व्यवस्था, स्कूल भोजन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसी संस्थागत व्यवस्थाओं ने देश को खाद्य संकटों से निपटने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान की है। फिर भी खाद्य सुरक्षा की चुनौती समाप्त अभी भी नहीं हुई है। इसका स्वरूप बदलता गया है। आज भारत के सामने एक ऐसी जटिल स्थिति है जिसमें खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुंच, पोषण गुणवत्ता, स्वास्थ्य, सामाजिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक क्षमता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने भोजन को अधिकार के रूप में स्थापित करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। NFSA की व्यवस्था ग्रामीण आबादी के 75% और शहर

0: आबादी के 50% तक कवरेज का प्रावधान करती है तथा प्राथमिकता परिवारों और अंत्योदय परिवारों के लिए अलग अलग खाद्यान्न अधिकार निर्धारित करती। इसी प्रकार बहुआयामी गरीबी में दर्ज कमी यह दर्शाती है कि सामाजिक और आर्थिक नीतियों के माध्यम से जीवन की अनेक वंचनाओं में सुधार संभव हुआ है। लेकिन खाद्य सुरक्षा की अगली पीढ़ी की नीति को केवल यह नहीं पूछना चाहिए कि लोगों को कितना भोजन मिला, बल्कि यह भी पूछना चाहिए कि क्या भोजन पर्याप्त रूप से पौष्टिक था, क्या वह विविधतापूर्ण था, क्या वह सुरक्षित था, क्या वह परिवार की आर्थिक क्षमता के भीतर था, क्या महिलाओं और बच्चों को समान रूप से पौष्टिक आहार मिला, क्या यह व्यवस्था जलवायु परिवर्तन के बावजूद टिकाऊ रह सकती है। यही प्रश्न भारत की भविष्य की खाद्य एवं पोषण नीति की दिशा निर्धारित करेंगे। भविष्य में भारत को खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा और पोषण सुरक्षा से स्वस्थ एवं सतत खाद्य प्रणालियों की ओर बढ़ना होगा। कृषि विविधीकरण, दालों और मोटे अनाजों का विस्तार, फल एवं सब्जियों की उपलब्धता, पोषण, संवेदनशील सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महिला सशक्तिकरण, बाल पोषण, सुरक्षित पानी और स्वच्छता, जलवायु स्मार्ट कृषि, डिजिटल पारदर्शिता तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी इस परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। अंततः हम यह कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा को केवल अनाज की समस्या के रूप में देखना सीमित दृष्टिकोण होगा। यह मानव अधिकार, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता से जुड़ा हुआ विषय है। भारत के लिए वास्तविक खाद्य सुरक्षा तभी संभव होगी जब प्रत्येक नागरिक को केवल पर्याप्त भोजन ही नहीं बल्कि सुरक्षित, पौष्टिक, विविधतापूर्ण, सुलभ और सम्मानजनक भोजन उपलब्ध हो। इस प्रकार भारत की खाद्य सुरक्षा की भविष्य की दिशा को एक सूत्र के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसे हम भूख से मुक्ति, खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा, पोषण सुरक्षा से स्वस्थ आहार और स्वस्थ आहार से सतत और समावेशी खाद्य प्रणाली के सूत्र के रूप में तय कर सकते हैं। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एक हिंदी वार्ता जिसका विषय था खाद्य सुरक्षा और पोषण, और इस वार्ता को प्रस्तुत कर रहे थे विनय कुमार पटेल। आशा करती हूँ आप सभी को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ आपकी संचालिका सुरक्षितामन को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: अनि भर्खरै शिक्षा ज्योति कार्यक्रममा
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियात जांच की जा रही है। दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण करने के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं, जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को, तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
1: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा है कि हाल के उपचुनाव में पार्टी की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने के इच्छुक लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अपने चुनावी हार की भरपाई के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रही हैं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति की वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। रूस द्वारा यूक्रेन के जाउपीरिजिया क्षेत्र में किए गए हवाई हमलों में 3 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। ये हमले का अमेरिका से रूस से डीजल खरीदने के समझौते की घोषणा के ठीक एक दिन बाद हुआ। यूक्रेन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के इस कदम से रूस को युद्ध के लिए वित्तीय मदद मिल सकती है। सरकार ने उस लेख का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि बालाकोट हवाई हमले के दौरान भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि लेख में ऑपरेशन की प्रकृति और क्रियान्वयन को गलत तरीके से प्रस्तुत

किया गया। इकाई ने मीडिया संगठनों को सलाह दी है कि वे सत्यापित जानकारी का उपयोग करें। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा की 1993 बैच के अधिकारी श्री शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजना से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने पीएम राहत योजना का उल्लेख किया। इसके अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वाले लोगों को 25,000 रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार भी मिलता है। फिट इंडिया संडे जोन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमोघाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इसमें भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: सधैँ उद्यमी है, है, है, है, है, है खेती त्यहाँदेखि यो अब बिक्री व्यवस्था
1: हजुर है। धन्यवाद हुन्छ, थ्याङ्क यू सर।
2: यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रगतिशील कृषक तथा उद्यमी कमला छेत्रीज्यूसित लिएको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम किसानवाणीलाई अघि बढाउँदै अब एउटा लोकगीत सुन्न लागिरहेका छौँ।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन।
2: प्रादेशिक समाचार विनोद अधिकारी बाट सुन्नुहोस्।

0: को रोज सुना करते हैं। और शुरू में इन्होंने लिखा है कि प्यारे दीदी सुन किशोरी जी और जनाब भाई ठोलदाई जी खुशहाल भरा आदाब बनवाई कर हम भी आपको आदाब कहते हैं। और इन्होंने कुछ दुर्गा भवानी माँ के नाम लेते हुए कुछ अपना प्रार्थना की है कि इन्होंने बहुत सारे पत्र भेजा है लेकिन क्यों नहीं करते, इनका ये एक प्रश्न भी है। इसीलिए सही सलामत इनका पत्र कार्यक्रम में शामिल हो, इनका ये प्रार्थना है। हम भी आपको यही दुआ करते हैं। और इन्होंने ये 66 पोस्ट कार्ड भेजा है लेकिन सभी पत्र पोस्ट कार्ड कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ है, इनका कहना है। हम आपको फिर भी बता दें कि आपका जितने भी पोस्ट कार्ड आते हैं बारी बारी करके देरी से क्यों ना हो लेकिन हम कार्यक्रम में प्रस्तुत करते हैं, प्रसारण करते हैं, शामिल करते हैं। लेकिन आपका किसी कारण पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमारे कार्यक्रम तक नहीं पहुंचे, किसी कारण पड़ गया हो तो हम तक नहीं पहुंचे तो हम भी उसको शामिल नहीं कर सकते जब तक हमारे पास में पत्र नहीं आते। लेकिन जितने भी पत्र हमारे पास आ जाते हैं वो सारे के सारे पत्र सभी श्रोता के सिर्फ आपका नहीं पत्र शामिल करते हैं हम कार्यक्रम डाकुतली में। और आने वाले दिन का जो दुर्गा पूजा है और दशमी का भी आकाशवाणी खरसांग के सारे परिवारजनों को इन्होंने अपना हार्दिक बधाई भेजा है। हम इसी कार्यक्रम के माध्यम से सब लोग सुन लेंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। और इन्होंने ये भी प्रश्न किया कि छोटी सी प्रश्न पूछता हूँ कि हिंदू मुस्लिम बनाई क्यों धरती पे, जवाब दीजिए। इसके जवाब में हम ये कह सकते हैं कि ये तो लोगों ने बनाया है, जबकि मानवता के हिसाब से अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। लेकिन कुछ अपने हिसाब से लोगों ने अपने अपने हिसाब से वो बनाया और उस हिसाब से अपना विश्वास के एक माध्यम बनाया है। तो अभी लेकिन हमें सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, हम ये कह सकते हैं। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम में पत्र लिखते रहेगा आने वाले दिन में भी और आपका पत्र जरूर शामिल होंगे। हम सभी का सभी श्रोताओं को प्रश्न और पत्र भी हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और अब भने अर्को श्रोता को पत्र पढौं, कसको छ हेरौं।
1: र यो अर्को पत्र रहेको छ रमेश राई याम्फू मिरिकबाट र वाले लेख्नु भएको छ, नमस्कार, कार्यक्रम डाकुतलीमा मेरो एउटा कविता पठाइरहेको छु, सहर्ष स्वीकारी पठन गरिदिनुहुन्छ भनी नम्र निवेदन टक्राउँदछु। अनि अन्तमा डाकपुतलीको सुस्वास्थ्य औ दीर्घायुको कामना राख्दछु भन्ने लेख्नु भएको छ। र वहाको कविताको शीर्षक रहेको छ निन्द्रा लागेन। हिज रातभरि निन्द्रा लागेन, स्वास्नी भन्छे दसैँ आइसक्यो, बोनस पायो कि पाएन, म भन्छु कालीको आमा 500 रुपियाँ दिनु पर्थ्यो, सिरकवाला आयो कि आएन, छोरा भन्छ जिन्स पेन्ट र हाईटेक जुत्ता, छोरी भन्छ स्वेटर र एउटा कुर्ता, स्वास्नीले कसरी पुर्याउने हो यसपालि, मलाई लाग्छ साह्रै सुर्ता, छोरा भन्छ यसपालि त ल्याउनै पर्छ है प्लास्टिककै भए पनि चियर, दसैँमा पनि त हुनु पर्यो मासु औ रम बियर, नेपालीको महिनै पछि हुन्छ नि चाड, त्यसैले त हाम्रो भाँच्ने भयो ढाड, त्यसैपछि लगत्तै आउने भयो तिहार, अनि घरमा पनि त रङ पचेर गर्नै पर्यो स्याहार, यो वर्तमान समयको पारिवारिक मागहरू कसरी पुर्याउने, अब त्यो दिनहरू आउँदैनन्, आमा बुवाहरू सबैलाई रुवाउने।
0: रमेश राई यम्फूज्यूले हामीलाई मिरिकबाट कार्यक्रम डाकपुतलीमा पत्र लेखेर पठाउनु भएको छ र पत्रमा यहाँले एउटा कविता पनि लेख्नु भएको छ, लेखेर पठाउनु भएको रहेछ, डाकपुतलीको सुस्वास्थ्यको दीर्घायुको कामना पनि गर्नुभएको रहेछ। र तपाईँलाई विशेष धन्यवाद पनि भनेर भन्दछौँ। र तपाईँले लेख्नु भएको जो निन्द्रा लागेन भन्ने कविता एकदमै समय सान्दर्भिक कविता लाग्यो र खास गरेर यो एउटा गरिबको पीडा एउटा मजदुरको पीडा हो भनेर यो कविताले झल्काउँदछ। किनभने जब जब जब दसैँ तिहार आउँछ कसैको निम्ति यो रमाइलो हुन सक्छ तर गरिबको निम्ति केही चुनौतीपूर्ण पनि हुने गर्छ भन्ने कुरो कविताले दर्शाएको छ। र यसरी नै आफ्नो कलमलाई निरन्तर रूपमा अघि बढाइरहनु होला, हाम्रो कार्यक्रम डाकपुतलीलाई सुन्दै गर्नुहोला, सुनिरहनु होला, आउने दिनहरूमा पनि कार्यक्रम के कस्तो लाग्छ त्यो पनि लेखेर पठाउँदै गर्नुहोला। र अब भने अर्को श्रोताको पत्र पढौँ, कसको छ हेरौँ।
1: र यो अर्को पत्र रहेको छ अजय धनुका मालबजारबाट र उहाँले लेख्नु भएको छ, ठुलदाई औ दिदी सुन केसरी जी को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार यहाँलाई हाम्रो तर्फबाट।
1: मैं अजय धनुका मालबजार से, मैं आकाशवाणी के नियमित श्रोता हूँ, मुझे आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है, विशेषकर रंग बिरंग को संसार, कथा सफलता को, हेलो खरसांग, डाकुतली और कुरै कुरामा अच्छा लगता है। मैं आज हमारे श्रोता साथियों से कहना चाहूंगा कि आप कार्यक्रम डाकुतली में कुछ ऐसा सवाल पूछे जो कार्यक्रम से संबंधित हो और सुनने में भी मजा आए, क्योंकि छोटे छोटे सवाल तो गूगल भी बता देते हैं। मैं आप सभी को

0: बुखार आया है, इसे नजरअंदाज ना करें।
1: डेंगू या मलेरिया दोनों ही मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं।
0: डेंगू और मलेरिया में कंपकंपी के साथ बुखार आना, पसीना आना, सिरदर्द, तेज पेट दर्द, बदन दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
1: ऐसे लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवा ना ले, तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाएं और डॉक्टर की सलाह लें।
0: घर के आसपास जमा पानी साफ करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मच्छरों को पनपने से रोकें।
1: जागरूक रहें, मच्छर जनित बीमारियों से बचाव करें।
0: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जनहित में प्रचारित।
2: श्रोतारू, कार्यक्रम को दोस्रो गीत स्वीकार्नुहोस्। मोहित चौहान को स्वरमा जब वी मेट फिल्मबाट।

0: हामी आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट बोलिरहेछौ र अबको केही क्षणमा नै आकाशवाणीको समाचार समप्रसारण गरी सुनाउनेछौ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास

0: उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
3: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मित मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मित पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर

0: आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं,
3: स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए,
2: लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
4: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
5: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
4: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
6: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
4: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपये के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार

0: करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
1: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमरीका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमरीकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति के इस सफर में आज सुनेंगे एक नए सांस्कृतिक गांव की कहानी, एक कलाकार की अनुपस्थिति से बातचीत, शहर की छतों पर उगती हरियाली और कुछ ऐसे नाम जिन्हें हम आज याद करेंगे। सबसे पहले हमारा संपादकीय। कल 11 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में एक प्रस्ताव पारित कर 11 अक्टूबर को बालिका दिवस घोषित किया। पहली बार ये दिवस 2012 में मनाया गया और इसकी जड़ें 1995 की बीजिंग घोषणा में है, जहां पहली बार बालिका को नीति विमर्श के केंद्र में रखा गया था। यानी दुनिया को ये मानने में भी सदियां लगी कि लड़की सिर्फ किसी की बेटी या बहन नहीं, अपने आप में एक स्वतंत्र नागरिक है। भारत की कहानी भी इस मायने में ज्यादा अलग नहीं थी और कुछ मायनों में अलग भी है। 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने लड़कियों का स्कूल खोला था, यानी बालिका शिक्षा

का बीज हमारी ही मिट्टी में बहुत पहले पड़ चुका था, फिर भी आज के आंकड़े हमें एक आईना सा दिखाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2019-21 के अनुसार 20 से 24 साल की लगभग 23% लड़कियों का विवाह 18 साल से पहले ही हो गया था। NFHS 4 में ये आंकड़ा करीब 27% था। इन आंकड़ों में ये गिरावट सुकून तो देती है, पर हर चौथी पांचवी बच्ची की शादी का बचपन में हो जाना कोई छोटी बात नहीं। जन्म के समय लिंगानुपात में भी थोड़ा सुधार दिखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू हुआ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं भी आई। स्कूलों में लड़कियों का नामांकन बढ़ा, मगर कार्यबल में उनकी भागीदारी का सवाल अब भी खड़ा है। सवाल अब सिर्फ स्कूल तक पहुंचने का नहीं, स्कूल के बाद आसमान तक पहुंचने का है। पढ़ने की आजादी के बाद चुनने की आजादी चाहिए, विषय चुनने की, पेशा चुनने की, साथी चुनने की और ना चुनने की भी। हमारी संस्कृति में कन्या को देवी कहने की परंपरा है, पर देवी बना देना अक्सर इंसान ना बने रहने देने का तरीका भी बन जाता है। बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि उसे पूजा नहीं, पर्याप्त हवा, पर्याप्त पोषण, पर्याप्त पढ़ाई और बिना डर के एक रास्ता चाहिए। उसके हिस्से का आसमान उसे दान में नहीं मिलना चाहिए, वो उसका अपना है। हमें बस उसकी परवाज को संभालना है और उसके रास्ते की दुश्वारियां हटानी है। बेटियों के आसमान की बात के बाद अब बात जमीन की। एक ऐसी जमीन की जहां भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत एक गांव का रूप लेने जा रही है। नाम होगा कलाग्राम। इसकी परिकल्पना पर सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र द सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी CCRT के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर से बातचीत की गुलनिगार चौधरी ने। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम।

0: स्वागत है डॉक्टर साहब। सीसीआरटी क्या है, इसका इतिहास क्या है और ये कला के किन क्षेत्रों में काम करता है?
1: देखिए ऐसा है कि सीसीआरटी दैट इज सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, नाम में ही बहुत कुछ है कि ये कल्चरल रिसोर्सेज तैयार करती है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो देश भर के स्कूल टीचर्स हैं, खास करके गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स, उनको हम आर्ट कल्चर एजुकेशन लिटरेचर इसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ये कोर्स नहीं है। तो देश भर के जो स्कूल टीचर्स है उनको जब हम इसमें ट्रेंड करते हैं तो वो हमारे एक कल्चरल एम्बेसडर्स बन जाते हैं। अब उनको सिर्फ आर्ट कल्चर एजुकेशन लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये चारों स्पर्धाओं में सिर्फ उनको ट्रेनिंग करना, उससे संबंधित जो जो बातें हैं, फिर सारी कलाएं हैं, 64 कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, तो इनको लेकर भी क्राफ्ट है, फोक आर्ट्स है, इनको भी लेकर के डांस ड्रामा म्यूजिक पेंटिंग है, स्कल्पचर है, तो ये जो सारी बातें हैं जिनका संबंध आर्ट और कल्चर से है, और फिर ये आर्ट और कल्चर को हम एजुकेशन के भी साथ में जोड़ते हैं। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो सीसीआरटी ये आर्ट कल्चर एजुकेशन लिटरेचर में कला के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से एक ऐसी पर्सनैलिटी टीचर की बनाते हैं कि वो सही में एक कल्चरल एम्बेसडर करके काम करता है। ये फिर हमारे देश भर में काम करते हैं, फिर वो अपने बच्चों को ये सारी बातें पढ़ाए जो उन्होंने ट्रेन किया है, वो बातें सारी वो बच्चों को तक पहुंचाते हैं। इसलिए देश भर में जो स्कूल के बच्चे हैं उन तक हमारी बात पहुंचती है, तो ये बहुत अहम एक बहुत अच्छा एक कार्य है ऐसा मैं समझता हूं। तो इन सारी बातों को लेकर हमारा एक सेंटर है, 1979 में शुरू हुआ था द्वारका में। यहाँ पर फिर हमारी एक बहुत अलग बहुत सुंदर ऐसी एक बिल्डिंग यहाँ पर बनी, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बिल्डिंग बहुत ही शानदार है। यहाँ पे हम सब गतिविधियां करते हैं।
0: सीसीआरटी के द्वारा कला ग्राम नाम के इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं आप।
1: कला ग्राम तो निश्चित ही ये दो डिविजन है और इसके पीछे सोच है। कला गुरुकुल जहाँ हम बात करते हैं, हमारा कहना है कि कला गुरुकुल में हम पूरा जो रिसर्च वर्क है, जो एकेडमिक फ्रेमवर्क है आर्ट कल्चर एजुकेशन लिटरेचर का, हम बड़े डिटेल में यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग भी आएंगे जो बच्चों को भी पढ़ाएंगे, जो स्कॉलरशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, फेलोशिप होल्डर्स को भी पढ़ाएंगे, टीचर्स को भी पढ़ाएंगे, एकेडमिक

0: पार्ट जो होता है आर्ट का, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें हो सकता है कि आगे चल के कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हम इसमें आर्ट और कल्चर को लेकर शुरू करेंगे। और दूसरा हमारा कलाग्राम का, क्राफ्ट में, आर्ट्स में, तो उन लोगों को यहाँ पर बुलाने वाले हैं, उन लोगों के वर्कशॉप्स होंगे, वो लोग यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार करेंगे, वो लोग बच्चों को भी पढ़ाएंगे, वो प्रोडक्ट बच्चे भी तैयार करेंगे, टीचर्स भी तैयार करेंगे, उसका हम मार्केटिंग करेंगे और हम ये देखेंगे कि इससे कुछ रेवेन्यू जनरेशन भी होगा, ताकि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं आर्ट के क्षेत्र में उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी इंडिजिनस जो भी कलाकृतियां बनती है उसको भी कहीं कहीं मार्केट मिलेगा। तो कलाग्राम में हम जैसे है कि आर्टिजन क्लस्टर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में कुछ एग्जीबिशन और कल्चरल परफॉर्मेंस के लिए कुछ स्पेसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमने और एक सोचा है कि कल्चरल टूरिज्म और इंटीग्रेटेड जोन्स इस प्रकार से हम उसमें तैयार करने की कोशिश करेंगे, उसका एक हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी रहेगा जिसमें डायरेक्ट क्राफ्ट सेल्स, एग्जीबिशंस, कल्चरल फेस्टिवल्स, ऐसे सारी बातें रहेंगी। तो ये कला गुरुकुल और कला ग्राम, ये दो लेवल पर काम करेंगे और दो लेवल पर काम करने के बाद में जब हम सोचेंगे तो हमको दिखाई देगा कि एक और जहां पर एकेडमिक है वहीं दूसरी ओर प्रैक्टिकल भी, तो दोनों बातों में ट्रेनिंग यहां पे सबको दी जाएगी। देश भर के जितने आर्टिस्ट हैं उन सबको फायदा होगा उसका, क्योंकि यहां से आर्ट वर्क जो बनने वाले हैं वो बेचे भी जाएंगे जिसमें एक रेवेन्यू जनरेशन भी होगा।
1: डॉक्टर साहब, तो इस प्रोग्राम में इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप किस तरह रहेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और रेवेन्यू जनरेट किस तरह करेंगे आप?
0: हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक और जहां आप बोलते हो कि हम एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग बनेंगे या प्रैक्टिकली हम बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि अकेले के भरोसे तो होगा नहीं, तो पार्टनरशिप्स जो है वो भी करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में हमने सोचा है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स जो है ये हमारे सोसाइटी के साथ किन किन के साथ हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो गवर्नमेंट की कल्चरल बॉडीज है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है, फिर यूनिवर्सिटीज है और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ में भी हम मिलकर के काम करेंगे, हो सकता है उनके साथ हम एमओयू भी करेंगे। कुछ इंटरनेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बहुत अच्छा काम करती है आर्ट और कल्चर को लेकर, हम उनके साथ भी काम करेंगे, उनके साथ में शायद कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स भी हम बना सकते हैं। कुछ एनजीओज जो है जो हेरिटेज और आर्ट्स पर बहुत काम करते हैं, सीएसआर पार्टनर्स या प्राइवेट फाउंडेशन वगैरह जो होते हैं उनके भी साथ हम देखेंगे कि फंडिंग हमको सपोर्ट कैसा मिल सकता है, उनके साथ में एकेडमिक कोलैबोरेशन कैसा हो सकता है, एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हम किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो रेवेन्यू जनरेशन का है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और जब तक कि हम रेवेन्यू जनरेशन करेंगे नहीं तब तक ये ढंग से चलेगा नहीं। तो रेवेन्यू जनरेशन प्लान में भी, एक्टिविटीज में भी, हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जिसकी फी रहेगी, टिकटेड कल्चरल इवेंट्स रहेंगे, फेस्टिवल्स रहेंगे, फिर कुछ कंसल्टेंसी भी रहेगी और कल्चरल सर्विसेज भी हम देंगे जिसका हमको पैसा मिलेगा, फिर पब्लिकेशन रहेगा, सेल्स ऑफ बुक्स रहेंगे, एजुकेशनल मटेरियल भी हम सेल करेंगे, फिर प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, कल्चरल प्रोडक्ट्स, ये भी हम जो तैयार करेंगे उसका भी हम प्रमोशन करेंगे, कल्चरल टूरिज्म एक्टिविटीज को हम बढ़ाएंगे, परफॉर्मेंसेज जो है प्रोडक्शन हम हमारे बढ़ाएंगे।
1: कलाग्राम कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताइए, और कितने समय में कला प्रेमियों को ये सब देखने का मौका मिलेगा?
0: हमारे सीसीआईटी जो जहाँ पर स्टैब्लिश द्वारका में, तो करीब करीब 10 एकड़ लैंड में सीसीआईटी है हमारी प्रांगण में, हम वहाँ पर एक कलाग्राम वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रक्शन वर्क भी हमारा अभी करीब करीब खत्म होते आ रहा है, 80% काम हमारा हो गया है, और हमारी जो एक्टिविटीज है वो अभी से वो शुरू हो जाएगी, मतलब वहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, बाकी के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, ये सारा हमारा जो है ये एक्टिविटीज, एक्सटेंशन एक्टिविटीज वगैरह, फेलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स जो बच्चों को दी जाती है उनके साथ में लेकर जो एक्टिविटीज है वो सारा हमारा शुरू हो जाएगा। पब्लिक जो यहाँ पर आने वाली है उनको भी एक करीब करीब एक 6 महीने के अंदर में उनको यहाँ पे ये लोग विजिट कर सकेंगे, और यहाँ पे उनको ऐसा लगेगा कि ये सही में एक बहुत बड़ा कल्चरल हब बनाया गया है सीसीआईटी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा।
1: आर्टिजन्स के लिए स्टॉल्स या शॉप्स का क्या प्रावधान रहेगा कलाग्राम में?
0: अब इसमें क्या दो लेवल पर काम होगा, एक तो ऐसा है कि जो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप फेलोशिप होल्डर्स जो लड़के रहते हैं, जो काम करने वाले आर्टिस्ट है, एक अमेच्योर लेवल पर काम होता है, तो फेलोशिप और स्कॉलरशिप होल्डर्स जो बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारी अलग स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि उनको हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए यहाँ पर हम एक्सपर्ट्स लोग लाएंगे, है ना, उनके लिए कुछ कोर्सेज शुरू करेंगे, ये एक लेवल का काम हो गया। दूसरा ऐसा है कि हमको सिर्फ इतना ही नहीं करना है, हमको प्रोफेशनल लेवल पर भी काम करना है, तो प्रोफेशनल लेवल पर जब काम होगा तो देश भर में क्राफ्ट के बारे में इतना वर्क लोग करते हैं, जैसा बेल मेटल का वर्क है छत्तीसगढ़ में किया जाता है बस्तर, तो ऐसे जो जो ओरिजिनल इंडिजिनस काम करते हैं वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उन लोगों के यहाँ पर वर्कशॉप्स होंगे। दूसरी बात ऐसी है कि एकदम हाई प्रोफेशनल लोग भी जो रहते हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा पेंटर है, बहुत बड़ा स्कल्प्टर है, वो यहाँ पे आके रह सकेंगे, वो यहाँ रहेंगे, वो काम करेंगे, और उनको हम जगह भी देंगे, और उनके माध्यम से बाकी लोग भी काम सीखेंगे, वो भी एक

0: आउटकम यहाँ पर होगा। दूसरी बात ऐसा है जो हम स्टॉल्स यहाँ पर तैयार करने वाले हैं, तो जो स्टॉल्स हम तैयार करेंगे वो स्पेशली रेंटल बेसिस पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश भर में है लोग की जो प्रोफेशनल भी काम करते हैं, कमर्शियल लेवल पर काम करते हैं, उनको हम ये फैसिलिटी अवेल करके देंगे, उनको यहाँ पे स्टॉल्स के लिए जगह देंगे, लेकिन उसका एक रेंट रहेगा, इसके सिवा हमारा रेवेन्यू जनरेशन होगा नहीं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने प्रोफेशनल्स का बताया अभी हमें, तो क्या इसमें छोटे स्तर पर काम करने वाले आर्टिजन्स को भी कोई सुविधा मिलेगी या कोई डिस्काउंट जैसी कोई चीज मिलेगी, जिससे कि वो भी कला को आम लोगों तक पहुंचा सकें या अपनी कला को दुनिया को दिखा सकें?
0: बिल्कुल, हमने सोच के रखा है, क्योंकि सारे के सारे पैसा कमा लेते ऐसा नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम उनका काम प्रोफेशनल रहता है, वर्क उनका बहुत शानदार रहता है, तो उन लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग तो डाइंग आर्ट फॉर्म पे भी काम करने वाले हैं, बहुत सारे डाइंग आर्ट फॉर्म्स भारत में कई सालों से चल रहे हैं, वो लोग ऐसे आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, उनको हम यहाँ पे लाएंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, और वो आर्ट मरनी नहीं चाहिए।
2: अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता साझा विरासत का गांव कलाग्राम। सौजन्य गुल निगार चौधरी, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश।

0: कला की सार्थकता का एक पहलू ये भी है कि कला समुदाय के साथ कैसे चलती है, उसके साथ कैसे निभाह करती है। और इसी क्रम में हमारी अगली प्रस्तुति में हम मिलते हैं एक ऐसी कलाकार से जिनका काम अकेले में खामोशी में चलता है। आशिमा धीर सहगल की कला उन चीजों की हाजिरी लगाती रही है जो अब नहीं है, यानी अनुपस्थिति की हाजिरी। स्मृति अक्सर चीजों में नहीं, चीजों के ना होने में बसती है। आशिमा की कला इसी ना होने की पड़ताल है। गुजरा हुआ कल यहाँ एक धुंधला अक्स बनकर लौटता है। छूटी हुई जगहें, मिटे हुए निशान और बीते रिश्तों की परछाइयाँ अलग अलग माध्यमों में दर्ज हो जाती हैं। उनकी कला हमें बताती है कि अनुपस्थिति भी एक उपस्थिति है और याद करना भी एक तरह की हाजिरी लगाना है।
1: मुझे आर्ट और कल्चर में बहुत दिलचस्पी थी शुरू से, जब से मैं छोटी थी। व्हाट वाज हियर, ये उसके बारे में है। डज मैटर हैव मेमोरी? तो मैं एक आर्ट रेजिडेंसी के लिए गई 45 डेज के लिए हिमालयस में, विच इज वहाँ पर ना रॉरिक म्यूजियम है नगर में, और वहाँ पर इस रेजिडेंसी में मुझे बहुत सारी चीजें समझ आई। आई बिगेन टू इन्वेस्टिगेट दोज थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स की तो मेमोरी होती है, पर मैं सोचती थी कि इतनी अच्छी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स है यहाँ पर, सब गिरी हुई, कोई दिखता नहीं है इसको। वेरी ऑफन आई यूज्ड टू थिंक दैट, मतलब ये रिमेम्बर करते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, सेलिब्रेशंस हुई, और साथ में यंगर पीपल कभी भी देखते भी नहीं है उसकी तरफ। सो आई डिसाइडेड टू ब्रिंग दोज इनटू कंटेम्पररी आर्ट।
2: जब मैं अपने ट्रेवल्स पे होती हूँ तो आर्किटेक्चर जब मैं देखती हूँ उनकी डिटेल्स, जो मटेरियल और मैटर होता है जिससे वो बिल्डिंग्स बनी है, तो वो मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। और बहुत बारी सोचती हूँ कि कैन द वॉल स्पीक,
1: साथ में इन्वेस्टिगेट द आइडिया ऑफ डज मैटर हैव मेमोरी। स्लोली स्लोली मैं इन्वेस्टिगेट कर, जैसे मैं करती गई मैंने रियलाइज किया कि मैटर तो बोल नहीं सकता, बट वी कैन स्टिल फाइंड आउट दैट मैटर हैज मेमोरी। बिकॉज जब आप कोई दरवाजे से आप जाते हो, स्पेशली नगर में, वहां जब वुड से और स्टोन से बना हुआ है तो वो ना वेयर आउट हो जाता है। तो दोज आर द एविडेंसेस दैट मैटर डज रिमेम्बर, बिकॉज थ्रू दीज एविडेंसेज ऑफ चेंज ऑफ मैटर यू कैन मेक आउट दैट दे डू remember things. And very often you go to a temple, वहाँ पर भी आपको vibrations मिलती हैं। वहाँ पर जैसे hundreds of people have come there और उधर उन्होंने दुआएं मांगी हैं, wishes मांगी हैं, तो जब आप जाते हो तो you automatically get some सुकून मिलता है। तो matter actually remember कर

करता है कुछ चीज, और वो हमारे को ट्रांसमिट करता है साइलेंटली. और फिर मैं लोगों को बोल रही हूँ कि ये मेरे आर्टवर्क है, उसमें देखो अंदर और पूछो कि इसमें क्या था, ये क्या था पहले और अभी क्या बन गया है. क्योंकि ना मैंने ये कपड़ा जैसा है ये मैंने

स्टिचिंग करी है और वो भी नाजुक दिखा रही है, और फिर ये सारी चीजें आप जब सब तरफ से देखोगे तो इनमें बहुत ज्यादा फ्रिजिलिटी या नाजुकपन है। तो मैंने ये सब चीजें जो फेंकी हुई चीजें थी उनको मैं ट्रांसफॉर्म करके आर्ट में लाना चाहती थी, ताकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे को मैटर जो होता है, चीजें जो होती हैं, उनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे जापानीज कल्चर में भी है, कुछ भी ओल्ड हो जाता है ना उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो पहला आर्टवर्क है ट्रेसेस ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें दिख रहा है कि एक्चुअली बिल्डिंग्स काफी पूरी हैं, इमेजेस कंप्लीट। उसके बाद मतलब टू क्रिएट मेमोरी, मैंने उनको थोड़ा सा डिसॉल्व किया है, ये डिसॉल्व किया है बाय बर्निंग, बाय स्टिचिंग, बाय यू नो फोटोग्राफिकली ट्रांसफरिंग थिंग्स।

0: अनुपस्थिति की हाजिरी। अभी आपने ये लघु प्रस्तुति सुनी, सौजन्य नेत्रा, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। अनुपस्थिति को रंग और आकार देना आसान नहीं, पर अब हम चलते हैं मौजूदगी की ओर, एक ऐसी हरी मौजूदगी की ओर जो शहर की छतों पर उग रही है। और इसी निजी हरियाली के ठिकाने पर आधारित है हमारा लघु रूपक छत पर उगती जिंदगी।
1: सुबह सुबह छत का दरवाजा खुलता है
2: और कई मंजिला इमारतों के बीच एक छोटा सा हरा संसार मुस्कुराता है।
1: गमलों में तुलसी, पुराने टब में पुदीना, खाली पेंट के डब्बों में टमाटर,
2: कहीं ड्रमों में मौसमी सब्जियां, कहीं बोतलों में लटकती बेलें।
1: ये छतें अब सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं, मन के ठिकाने हैं।
2: पौधे सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, वो इमारतों को ठंडा रखते हैं, धूल सोखते हैं, बारिश का पानी थामते हैं और शहरी गर्मी को घटाने में मदद करते हैं।
1: और सबसे बड़ी बात, ये हमें धैर्य सिखाते हैं, बीज रोपकर इंतजार करना, उस दौर में जब हर चीज इंस्टेंट है।
2: शुरुआत सिर्फ एक गमले से ही हो सकती है।
1: धूप कितनी आती है ये देखिए, हल्की मिट्टी, गोबर की खाद और रसोई का जैविक कचरा, और छत की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखिए।
2: कंक्रीट के इस जंगल में अपना एक पेड़, अपना एक फूल, अपना एक छोटा आसमान। प्रसिद्ध अर्बन गार्डनर किशी अरोड़ा कहती हैं,
3: अगर आपके पास कोई भी पौधा नहीं है तब भी आप एक गार्डन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक्चुअली बीज पहले से ही होते हैं, किचन के अंदर हमेशा बीज होते हैं। आप अपना नमकदानी खोलिए, आपको उसी में तीन बीज मिल जाएंगे, धनिया, मेथी और राई, उसी से स्टार्ट कर लीजिए। और अगर वो नहीं तो टमाटर है, और टमाटर नहीं तो खीरा है। अगर आप इनकी सिर्फ एक स्लाइसेस काट के मिट्टी में लगा के गाड़ देंगे, आई प्रॉमिस यू एक सैपलिंग निकलेगा उसके अंदर से। तो हमको बीज ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, हमारे घर के अंदर ही है। शुरुआत में सबसे पहले दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप देखिए आपके घर में सूरज की किरणें किस तरफ गिरती हैं। अगर आपकी बालकनी है, सोचिए आप अपार्टमेंट में रहते हैं, अगर आपके पास बड़ा गार्डन है तब तो बात अलग है, क्योंकि वहां पे दोनों वर्जन होंगे, छाया वाला एरिया और धूप वाला एरिया। बट लेट्स अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि आप एक घर में हैं जहां बालकनीज हैं, तो आप तो पहले देखिए कि आपके सूरज कितना आता है। अगर खूब धूप आती है तो धूप वाले पौधे रखेंगे, फूल वाले पौधे रखेंगे, और अगर छाया वाला है तो छाए वाले भी पौधे हैं, हर तरीके के पौधे होते हैं। तो पहले सूरज की किरणें कितनी आती हैं, एंड दूसरी चीज मिट्टी बनाना, जो मुझे लगता है हम बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं, नहीं करना चाहिए वो। अगर आपके आसपास कोई पार्क है, वहां के माली से बात करिए, उनको थैंक यू बोलिए और एक कट्टा मिट्टी लेकर आइए, और उस मिट्टी के अंदर आप अपने घर के थोड़े बेसिक मसाले डालिए, जैसे हल्दी और जरा सा दालचीनी का पाउडर और जरा सा काली मिर्ची की, कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ हो तो वो अपने आप ठीक हो जाए। घर में हमारे पास ऑलरेडी बहुत चीजें होती हैं, पर हम उसे देखते नहीं है, नजरअंदाज कर देते हैं। मिट्टी, धूप का जब ध्यान रख लें, उसके बाद आप पौधा लगाएं। धूप के जगह अगर मिल रही है तो वहां पे धूप के पौधे, बहुत धूप के पौधे होते हैं, और नहीं तो फिर इनडोर पौधे, छाए वाले, वो लगाएं। और मिट्टी में जब आप कभी घर में खाना बना रहे होते हैं तो थोड़ा याद रखिए कि

0: में हमारे जितने भी खाने के छिलके होते हैं उनकी कॉम्पोस्ट हमें बनानी चाहिए। खाद बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपके घर में किचन है और वहाँ पे कुछ भी खाना बन रहा है तो दो चीजें, वहाँ पे जितने भी खाने के चीजें जो आप फेंकते हैं डस्टबिन के अंदर, प्लीज उसे मत फेंकिए। घर में हर किसी के दूध का बर्तन होता है, प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, कुछ भी होता है, आप उसमें कलेक्ट करिए एक दिन का। तो जैसे मेरे घर में सब्जियां बनी, एंड ट्रिमिंग्स होता है, कुछ होता है जिसे हम ग्रीन पार्ट कहते हैं। मैं बहुत बेसिक एक डेफिनेशन बता रही हूँ। मैं यहाँ पे नींबू हमेशा अलग कर देती हूँ कि मैं अपने नींबुओं से एंजाइम बनाती हूँ। तो पहली बात यह है कि जो भी खाने का जितना भी वेस्ट होता है डस्टबिन में मत डालिए, प्लीज एक डब्बे में इकट्ठा करिए। दूसरी चीज, घर में हर किसी के एक ढक्कन वाली बाल्टी जरूर होती है, वो बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी के नीचे एक या तो टब रख दीजिए, एक ट्रे रख दीजिए, बड़ी थाल रख दीजिए, कुछ ऐसा रख दीजिए नीचे कि आप जब उस बाल्टी में छेद कराएंगे कारपेंटर से, चारों तरफ छेद करा लीजिए एयर फ्लो के लिए। हम उस बाल्टी में छेद करा रहे हैं चारों तरफ। हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर सबसे पहले अपने खाने का जो भी हमारा ट्रिमिंग्स होती है वो डालते हैं, और फिर ये नाइट्रोजन पार्ट हुआ, फिर डालते हैं हम कार्बन पार्ट, जितने भी सूखी हुई चीजें होती हैं। कहीं से डिलीवरी आती है चेक करिए, अगर वो पेपर कार्डबोर्ड रिसाइक्लेबल है तो उसको फाड़िए, छोटा छोटा करिए, जितने सूखे पत्ते गिर, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होइए, ये पत्ते डालिए, इसे हम कार्बन बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम कर रहे हैं ग्रीन एंड ब्राउन का ऑल्टरनेटिव लेयर। पहले हमने खूब सारा नीचे ग्रीन ये ट्रिमिंग्स डाल दिया, फिर ब्राउन कार्बन डालिए, आपने ये ऑल्टरनेटिव लेयर बनाई और इस पे हल्का सा पानी का छिड़काव करा और फिर लास्ट में कार्बन डाल दिया और ढक दिया। थोड़े टाइम में कॉम्पोस्ट बन जाता है। इसको हिलाते रहना डेली और इसको एक थोड़ा सा शेडी डार्क सेमी शेड एरिया में, जहां पे आपको लगता है थोड़ा अलग कर सकते हैं, उसे कर दीजिए, जिससे कि कई लोगों को जैसे रिगली चीजों से इनसे के अंदर लगेंगी थोड़े कीड़े जो अच्छे होते हैं हमारे लिए बहुत, तो इसको थोड़ा सा कोने में करिए और ये डेली फॉलो करिए, तो आपके पास कॉम्पोस्ट थोड़े टाइम में रेडी हो जाएगी। नहीं बनाना चाहते कॉम्पोस्ट और आपको थोड़ा अजीब लगता है तो जिस गमले में या जगह पे पौधा लगा हुआ है उसके साइड में आप थोड़ा सा खोद के ये खाने का जो मिक्सचर है अंदर डाल के मिट्टी से ढक दें। अर्थ वो अपने आप उसको तोड़ेगी और नीचे पोषण देगी इन सब पौधों को। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कभी चावल बनता है, दाल बनता है, इनको धोइए, इनका पानी आप फेंके मत, इनका पानी आप अपने पौधों को दीजिए, उसे थोड़े दूसरे पानी में डाइल्यूट करें, डाल दें। बहुत सारे सिंपल तरीके हैं अपने पौधों को पोषण देने के, बट जो मेन चीज है पहले धूप देखिए, उसके बाद आप मिट्टी देखिए और फिर हम डिटेल में जाते हैं कि अच्छा इसको और कैसे बड़ा करें। पर ग्रोइंग अ प्लांट बहुत सिंपल है, जिसे हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। मेरा छत ना, जिसे बोलते हैं एक बायोडाइवर्स एरिया है, मेरे छत पे पेरेनियल्स हैं जो पूरे साल उगते हैं, थोड़े ऑर्नामेंटल्स भी हैं, सब्जियां हैं, सीजनल हैं, सीजनल फूल हैं। जैसे अभी मौसम बदल रहा है, एक गार्डनर के लिए ये बहुत अच्छा मौसम होता है क्योंकि इस मौसम में प्रीटी मच सब कुछ उगता है। गर्मी से हम थोड़ा परेशान होते हैं बट ये मौसम बहुत अच्छे वाला मौसम है, जहां धूप भी होती है और एक हल्की सी ठंडक भी होती है रात में। एक चीज जो मैं अपने गार्डन में ऊपर फॉलो करती हूँ, मैं कोई भी केमिकल नहीं डालती हूँ, मुझे पेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक चेन है जो हमको जिस दिन समझ आ गई तो हम शायद इतना पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे। अगर छिपकली है तो वो एक कीड़े को खाती है तो वो कीड़ा उसका खाना बनता है और वो हमारे को उस कीड़े से बचाती है। तो ये एक चेन है जिसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए और उसको एक्चुअली रहने देना चाहिए। जितने बर्ड्स इंसेक्ट्स आपके टेरेस पे होंगे उतना अच्छा बायोडाइवर्सिटी होगा, उतना अच्छा फ्लोरा फौना होगा और वो बहुत हेल्प करता है पौधों को खुश रहने में। ये ना सिर्फ मेरे को खाना और रिटर्न में हर डेली कुछ ना कुछ देता है, ये मेरी मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा खुश रखता है। मतलब मुझे शायद अब इंसान इतने पसंद नहीं है जितने मुझे पौधे पसंद है।
1: ये शहर के बीच प्रकृति के लिए बचाई गई एक छोटी सी जगह है
2: और शायद ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जीवन के साथ सह अस्तित्व की संस्कृति,
1: छत पर उगती जिंदगी के साथ। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
2: और मैं प्रांजल।

हरियाली की इस बात के बाद अब पतझड़ का वो हिस्सा जब हम उन्हें याद करते हैं जो जाकर भी कहीं नहीं गए। कुछ जीवन समय से बड़े होते हैं, कुछ राग रंग शब्द अपने रचयिता के जाने के बाद भी हमारे सांस्कृतिक जीवन में बजते खिलते और दर्ज होते रहते हैं। आज के स्मृति शेष में हम याद कर रहे हैं भारतीय कला संस्कृति की कुछ ऐसी विभूतियों को

0: यमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, जिनकी गायकी में कर्नाटक संगीत की परंपरा, अनुशासन और भाव संपन्नता का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है। उस्ताद अब्दुल करीम खान, जिनकी गायकी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में स्वर की ऐसी कोमल और भावपूर्ण दुनिया रची जिसकी छाप आगे की पीढ़ियों तक पहुंची। राजा रवि वर्मा, जिन्होंने भारतीय पौराणिक और सांस्कृतिक कल्पना को आधुनिक चित्रकला के माध्यम से एक बिल्कुल नई दृश्य भाषा दी। उस्ताद अली अकबर खान, सरोद का वो महान साधक जिनकी साधना ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व के मंचों तक पहुंचाया। बेगम अख्तर, जिनकी आवाज में गजल, ठुमरी और दादरा केवल संगीत नहीं, एक पूरा भाव जगत बन जाते थे। इन सभी को याद करना सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं है, ये अपनी सांस्कृतिक स्मृति को फिर से सुनना है, गुनना है। संस्कृति भारती के इस अंक का समापन हम बेहद भारी मन से कर रहे हैं। बीती 8 अक्टूबर को हिंदी और मराठी रंगमंच और सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर इस फानी दुनिया से गुजर गए। उनकी उम्र 75 साल की थी। ২০১৩ में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नाना को सिर्फ अभिनय के लिए ही नहीं याद किया जाएगा, सूखे से जूझते किसानों के लिए काम हो या करगिल युद्ध के समय सैनिकों के बीच होना, और हाल ही में सीमा पार गोलाबारी से प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना। उनके संवादों की धार हमें हमेशा याद रहेगी, और ये भी कि वो एक ऐसे शख्स थे जो अपने कहे को जमीन पर निभाते थे। कला की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई है, चाहे वो चीख में हो या खामोशी में। नाना पाटेकर ने ये बार बार साबित किया। पत्रिका की ओर से हम इस महान कलाकार को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी के साथ संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार।

0: लक्ष्मी फेलोशिप अवार्ड, युवा संगीत सम्राट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार और राग लय प्रभा जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा चुका है। संगीत के साथ साथ आप कीर्तनास ऑफ कर्नाटक पुस्तक का सह लेखन किया है और दासार्चने प्रोजेक्ट के तहत 101 कृतियों की रिकॉर्डिंग भी की है।
1: अर्चना इज अ प्रोमिनेंट कर्नाटिक वोकल आर्टिस्ट एंड एन ए ग्रेडेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her music training in 2008 under Vidwan Vasantalakshmi Hebbar and Dr. V. Aravinda Hebbar. She also had a brief training period under late Srimati Ranjani Hebbar and has been continuing her advanced learning under the guidance of Chitraveena N. Ravikiran at present. Alongside her duet partner Samanvi, together known as the Latangi Sisters, she has performed over 200 concerts across India

0: राग बहुदारी के बाद अब प्रस्तुत है पुरंदरदास की एक रचना धूपारतिया, जो मोहन कल्याणी राग तथा आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you will listen to a composition by Purandaradasa, Dhuparatiya, set in Rag Mohana Kalyani and Aditala.

0: अब प्रस्तुत है मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना श्री गुरु गुहा, जो राग उदय रविचंद्रिका तथा रूपक ताल में निबद्ध है।
1: Now you will listen to a composition by Muthuswami Dikshitar, Shri Guru Guha, which is set in Raga Udaya Ravichandrika and Rupaka Tala.

0: अपनी कार्यक्रम को जारी रखते हुए अर्चना उपाध्याय अब प्रस्तुत करेंगी उतुकाडु वेंकट रवि की रचना रसिक महोत्तमा, जो राग सरसांगी तथा मिश्र चापुताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर कॉन्सर्ट, अर्चना उपाध्याय विल नाउ प्रेजेंट रसिक महोत्तमा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ उतुकाडु वेंकट कवि, विच इज सेट इन राग सरसांगी एंड मिश्र चापुताला।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे प्रस्तुत किया मृदंगम पर सुनाद कृष्णा अमय तथा मोरसिंह पर बालकृष्ण हसमने। अर्चना उपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन त्यागराज की एक रचना चल रे रामा से कर रही हैं, जो राग आहिरी तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam, presented by Sunada Krishna Amai on Mridangam and Balakrishna Hosmane on Morsing. Archana Upadhyaya will now conclude her concert with Chellare Rama, a composition of Tyagaraja, which is set in Ahiri Rag and Mishra Chapu Tala.

अखिल भारतीय संगीत के कार्यक्रम में अब तक आप अर्चना उपाध्याय का कर्नाटिक शैली में गायन सुन रहे थे। आपके साथ वायलिन पर साथ कर रहे थे तन्मयी उपंगला तथा मृदंगम पर सुनाद कृष्णा अमय और मोरसिंग पर थे बालकृष्णा होसमने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी मंगलूर के स्टेशन में रिकॉर्ड कर

0: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ आज का अखिल भारतीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक वोकल रिसाइटल बाय अर्चना उपाध्याया। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द वायलिन बाय तन्मयी उपंगड़ा एंड ऑन द मृदंगम सुनादा कृष्णा अमाई एंड बालकृष्ण होसमने ऑन मोरसिंग। This concert was recorded earlier at the studios of Akashwani Mangaluru and broadcast from Akashwani Delhi. Please stand by for our next program.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉक्टर जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल CJP के विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ CJP के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने प्रदर्शनकारियों द्वारा गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में प्रवेश करने के बाद पुलिस को परिसर में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा राजनीति करने की कड़ी निंदा की है। श्री कालका ने कहा कि प्रदर्शनकारी तफ्ती लेकर जबरन गुरुद्वारे के हाल में घुस गए और वहां नारे लगाए। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए गुरुद्वारा समिति ने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को बुलाया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं।

0: उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर लाइन बदलने की इंटरचेंज सुविधाएं भी अब उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलीन से हार गए। पुर्तगाल फुटबॉल महासंघ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को टीम छोड़कर चले जाने के कारण निलंबित कर दिया है। महासंघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। महासंघ ने कहा कि यह मामला अनुशासनात्मक जांच समिति को सौंप दिया गया है और उसके निष्कर्ष आने तक गोपनीय रखे जाएंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय अवकाश के दौरान नए कोच जॉर्ज जीसस के साथ कम खेलने के समय पर विवाद के कारण पुर्तगाल टीम शिविर छोड़ दिया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has called for reform of the UN Security Council, saying India and Africa cannot remain underrepresented in global decision-making. Addressing a gathering at the Adwa Victory Memorial Museum in Ethiopian capital Addis Ababa, Dr. Jaishankar called for fair African representation in both permanent and non-permanent membership and recalled India's efforts during its 2023 G20 presidency to secure permanent membership for the African Union.
2: India and Africa cannot remain unrepresented in global decision making. And that is why India worked resolutely during its G20 presidency in 2023 to secure a permanent membership for the African Union. This decade has seen the UN slide steadily into irrelevance, helpless in the face of major challenges. Our objective is not merely to add more seats around an old table. It is to make global governance more democratic, more responsive, and more representative. And in doing so, make the United Nations itself more capable and more credible.
1: On the final leg of his three-nation African tour, Dr. Jaishankar urged Indian businesses to invest in the continent and called for stronger cooperation in food security, agriculture and sustainable development. India has said the proposed interim trade agreement with the United States will be finalized in light of changing circumstances. Addressing members of Industry Chamber, PSD Chambers of Commerce and Industry in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the framework announced in February is being reassessed amid changes in the US tariff landscape. He added that India is seeking more favorable tariff terms to ensure its goods remain competitive in the American market. Mr. Goyal said India is simultaneously pursuing trade agreements with several partners including Israel, Chile, the Gulf Cooperation Council and the Eurasian Economic Union. The National Investigation Agency has registered a case to investigate last month's mid-air cockpit attack on Captain Smith Machar aboard a Fly Dubai flight. The case has been registered under the relevant provisions of the Anti-Hijacking Act 2016 and the Unlawful Activities Prevention Act 1967. Captain Machar, who hails from Gujarat, was stabbed and seriously injured by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight while traveling from Dubai to Tel Aviv on the 30th of last month. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. Several leaders across the world praised the bravery of Captain Machar, who saved the lives of passengers despite being injured. Several protesters who were attempted to reach the protest site at Jantar Mantar in New Delhi today were detained by Delhi police. Yesterday, Delhi police